फिल्म बागवान में अमिताभ बच्चन और ऋचा शर्मा के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यही संपन्न हुआ। एफएम बैंड 14.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। दिन के 11 बजने को है। अब आकाशवाणी भोपाल से आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण।

0: हमारे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे पर्यटन के बदलते आयाम के बारे में। गर्मी की छुट्टियां लग गई हैं और काफी सारे लोग घूमने का, कहीं ना कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं। तो इन सब का क्या मकसद है, क्या इनके फायदे हैं, इस विषय पर हम आप सभी की राय लेंगे और सुनवाएंगे कुछ मन पसंद, हमारी पसंद के गीत। तो चलिए कॉल कीजिए 2660902 पे और एसटीडी कोड आप जानते ही हैं 0755। हमें इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। हेलो हेलो
1: हेलो मैडम, नमस्ते।
0: नमस्ते जी।
1: जी फोन करेगी सुने हैं
0: जी? हाँ, नहीं, बात आपकी गीत हमारे।
1: बात आपकी गीत हमारे है।
0: आज हम किसी विषय पर आपसे बात करेंगे और फिर सुनवाएंगे अपनी पसंद का गीत।
1: जी मैडम।
0: तो बताइए, क्या शुभ नाम है आपका?
1: हमारा नाम गिरधारी सेन है।
0: गिरधारी
1: सेन?
0: कहाँ से? कहाँ से बोल रहे हैं गिरधारी जी?
1: दमोह से बोल रहे हैं मैडम।
0: दमोह से? अच्छा जी। तो फैमिली में कौन कौन है?
1: फैमिली में बच्चे हैं हमारे दोनों।
0: अच्छा, और कितने बड़े बड़े हैं आपके बच्चे?
1: अभी 12th पास हुआ है लड़का।
0: हाँ,
1: तो कॉलेज में जा रहा है। बच्ची अभी 10th पास हुई तो 11th क्लास में जा रही है।
0: अच्छा, चलिए। तो कहीं घूमने का प्लान बनाया है कि नहीं आपने?
1: घूमे आए मैडम।
0: अच्छा, घूमा है? कहाँ पर घूम कर आए?
1: दो तीन जगह हुआ है, उज्जैन हो गया है।
0: हाँ?
1: हाँ, और यहाँ पे अभी मैहर से लोधी।
0: चलिए बढ़िया। तो हम यही बात करना चाह रहे हैं कि जो अपन पर्यटन के लिए जाते हैं
1: जी,
0: पर्यटन के लिए जाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है?
1: अब उसमें क्या है कि मैडम जी, अब गर्मियों की छुट्टी भी चल रही है, बच्चों का एंजॉय हो जाता है।
0: हाँ,
1: और का और घूमने फिरने में थोड़ी क्या है कि अपने यहाँ से हट के दूसरे जगह वहाँ का माहौल भी अपना वो आ जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि है ना, हम लोगों का जो मन है वो भी इतने सुंदर दृश्य देख के थोड़ा सा, जो कहते हैं ना, रिचार्ज हो जाता है
1: जी,
0: है ना, परिवेश बदलने से, माहौल बदलने से, सुंदर सुंदर नज़ारे देखकर। बस इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो गिरिधर जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने कॉल किया।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते। हाँ
1: नमस्कार।
0: जी कौन बोल रहे हैं
1: बुरहानपुर से सलीम,
0: जी?
1: बुरहानपुर से सलीम बोल रहा
0: बुरहानपुर से सलीम
1: हूँ।
0: जी। सलीम जी क्या हाल है?
1: अच्छे हाल है आप? जो बोलो मेरा, बहुत दिनों से सुन रहे थे तो मैंने कहा आज लगा के देखो,
0: अच्छा।
1: आपका कार्यक्रम बहुत।
0: हाँ तो ये बताइए सलीम जी, फैमिली में कौन कौन है आपके?
1: हमारी फैमिली में दो भाई है,
0: हाँ
1: सात भतीजी है, भतीजा है।
0: अच्छा। तो कहीं घूमने उमने जाते हैं कि नहीं जाते आप?
1: जाते मैडम, मैं तो नाबीना हूँ मैडम, मेरे को दोनों आंखों से नहीं दिखता।
0: अच्छा, लेकिन है ना, महसूस तो कर सकते हैं आप,
1: हाँ मैडम, हाँ
0: है ना? तो बस यही जानना था कि जो हमारे पर्यटन हैं उनके
1: हाँ
0: बदलते आयाम क्या हैं, हम लोग क्यों घूमना पसंद करते हैं कहीं भी अपने घर से बाहर जाकर, थोड़ा सा बाहर की वादियों।
1: इसलिए घूमना पसंद करते हैं कि वहाँ वातावरण साफ होना चाहिए, सुंदर
0: हाँ
1: होना चाहिए। हाँ,
0: हाँ
1: गंदगी साफ होना चाहिए बिल्कुल, माहौल अच्छा होना चाहिए,
0: बिल्कुल। और
1: भाईचारा का।
0: आज जो पहले हम लोग घूमते थे और आज के घूमने में कुछ तो फर्क आया है ना? अब ज्यादा आसान हो गया है या कठिन है, आप क्या कहना
1: मैडम
0: चाहते हैं?
1: आसान तो हो गया, पर क्या है कि अभी भी जैसे कुछ परेशानी जाने में लगती है
0: जाने में बल्कि अब आसान हो गया, सबके पास स्मार्टफोन
1: मैडम।
0: है।
1: अपन जैसे बाहर जाओ, बाहर
0: हाँ
1: पर्यटन में तो ट्रेनों में इतनी गर्दी रहती कि मैं बता नहीं सकता,
0: हाँ लेकिन पहले
1: उसमें
0: की तुलना में अब
1: पड़ता।
0: अपन
1: वहाँ वहाँ पहले से आसान हो गया
0: पहले से काफी
1: जाना।
0: आसान हो गया है। हमारी बढ़ती हुई सुविधाओं की वजह से हमें बहुत सारी चीजें ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जाती हैं। हम
1: हाँ
0: अपने
1: बिल्कुल,
0: होटल्स की बुकिंग कर लेते हैं, ट्रेन की
1: ये
0: बुकिंग
1: बात तो सही
0: एडवांस में
1: बात
0: कर
1: है।
0: लेते हैं, और गूगल मैप के जरिए हम अपना रास्ता भी चुन लेते हैं आसान तरीके से, है ना
1: हाँ मैडम,
0: जी। चलिए समीर सलीम जी,
1: हेलो मैडम,
0: आपका। हाँ जी
1: आपका नाम क्या है?
0: कविता रावत।
1: सविदा।
0: चलिए
1: चलो
0: सलीम
1: ठीक
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने कॉल किया।
1: है, आपका भी धन्यवाद। बहुत पहली बार लगाया मैडम, बहुत दिनों से सुन रहा था रेडियो, मैं सुनता
0: चलिए
1: रहता हूँ, तो मैंने
0: बिल्कुल,
1: कहा आज
0: आपका
1: ट्राई
0: हमेशा
1: करूँ।
0: लगेगा, आप ट्राई किया करिए, और
1: हाँ
0: धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद।

0: हेलो। हाँ
1: हेलो,
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते दीदी। बस
0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम
1: आरती भारद्वाज।
0: आरती भारद्वाज।
1: हाँ
0: आरती जी आपने कॉल 1 हफ्ते बाद ही किया होगा ऐसी उम्मीद करती हूँ।
1: नहीं, बहुत दिन में, करीबन 3-4 महीने हो गए,
0: चलिए कोई
1: मतलब
0: बात नहीं, एक्चुअली 1 हफ्ते के अंदर हम दोबारा कॉल नहीं ले पाते हैं अपने लिसनर्स का, इसलिए
1: क्योंकि
0: कोई बात।
1: फरवरी में लगाई थी। हाँ
0: अच्छा, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: हेलो,
0: कहाँ से बात कर रही हैं?
1: बुरहानपुर से।
0: अच्छा, बुरहानपुर से हैं आप भी?
1: हाँ,
0: अभी हमारे जो
1: बुरहानपुर।
0: श्रोता का कॉल आया था सलीम जी का, और वो भी बुरहानपुर से थे, तो बुरहानपुर की लाइन आज काफी क्लियर है।

0: है ना फोन कॉल से जी।
1: बार पहले लगाई लगा चुकी हूँ,
0: अच्छा,
1: और दो
0: आरती
1: दिन
0: जी
1: से मुझे
0: क्या
1: फोन
0: करती
1: कर
0: हैं
1: रही।
0: आप?
1: कुछ नहीं, घर का काम, वो खेती बाड़ी में थोड़ा बहुत आ जाते हैं, बाड़ी वगैरह लगाते हैं
0: अच्छा, फैमिली
1: ऐसे
0: में
1: कुछ
0: कौन
1: करना है
0: कौन है?
1: क्या।
0: और आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं?
1: मेरे सास ससुर देवर देवानी ननद सब है,
0: अच्छा।
1: बहुत दो लड़कियां हैं।
0: तो आरती जी कहीं घूमने जाती हैं आप पर्यटन के
1: हाँ
0: लिए?
1: अभी आए घूम के, तो अभी घर से मायके, पहले
0: अच्छा, तो
1: भोपाल से उधर साइड में पड़ता नर्मदापुरम जिले में शिवनी बना था।
0: हाँ, अच्छा, तो कैसा लगता
1: हाँ
0: है आपको? मतलब इसके अलावा भी आपने कहीं जो सुंदर सुंदर वादियाँ हैं, अच्छे अच्छे दृश्य वाली जगह जो होती हैं घूमने के हिसाब से,
1: आप
0: वहाँ भी
1: हाँ
0: घूमे
1: बहुत
0: हो?
1: तो, हाँ बहुत घूमने की जगह हमारे यहीं पे बुरहानपुर में ही,
0: ये बात सही है। कैसा लगता है आपको?
1: बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत अच्छा घूमने लायक बहुत जगह है। आशीर्वाद का किला है, हम मतलब यहाँ रहते हैं, वहाँ 12 मंदिर है, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग बनी है नागझिरी घाट है,
0: हाँ,
1: तो वहाँ भी रोज शाम को जाते घूमने।
0: ऐसा
1: आपके
0: लगता है
1: वहाँ
0: आपको कि है ना, घूमने से मतलब पर्यटन से हमें कई लाभ होते हैं, हमारी दिनचर्या में बदलाव आता है, मन को खुश खुशी मिलती है, ऐसा होता है या नहीं? होता
1: घूमने
0: है ना
1: से बहुत अच्छा
0: ऐसा?
1: लगता
0: जी। चलिए आरती जी,
1: है।
0: बहुत बहुत
1: मैं हमारे
0: धन्यवाद।
1: प्रतिदेव जी बात करना चाह रहे थे,
0: हाँ जी, बिल्कुल करवाइए।
1: बात करते हेलो बोलिए।
0: हाँ जी, नमस्ते। आप बोलिए, हम तो सुन रहे हैं आज।
1: टॉपिक पे बोले वही तो आप बोलोगे तो बोलेंगे।
0: आप ये बताइए कि पर्यटन के कुछ लाभ हमको मिलते हैं या नहीं मिलते? हम घूमने जाते हैं तो हमारा मूड थोड़ा रिफ्रेश होता है या नहीं होता है?
1: बिल्कुल
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा
1: हाँ ठीक है, धन्यवाद।
0: जी।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नमस्कार। कौन
1: जी, नमस्कार।
0: बोल रहे हैं?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ,
0: पूरा नाम?
1: राकेश कुमार बात कर रहा हूँ, शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: अच्छा, पहले भी आपसे बात हो चुकी है?
1: नहीं, मैं दो दो दो हफ्ते के बाद कॉल लगाया आपके पास।
0: अच्छा,
1: जी
0: नहीं
1: जी
0: इसके पहले कभी बात हुई होगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी आवाज़ सुन के कि आपसे मैं बात कर चुकी हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप कर चुकी है, क्योंकि जैसे कि आपका जो नियम होता है 10 दिन का, तो मैं 2 हफ्ते के बाद कॉल लगाया, तो
0: बहुत
1: इसलिए कॉल
0: अच्छी
1: लगाया।
0: बात, बहुत अच्छी बात। राकेश जी, आज का जो हमारा विषय है वो है पर्यटन के बदलते आयाम।
1: जी
0: तो
1: जी
0: उस
1: जी
0: बारे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जो पर्यटक जो है बदलते जो राय, तो जैसे कि इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आजकल जो पर्यटक जो आते हैं हम कहीं भी, उनकी बदलती राय ये होनी चाहिए कि जैसे आप कहीं भी घूमने जाए, अगर मानो कि अगर आप शिमला आते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है पर्यटक स्थल है, वो तो आप सभी जानते हैं, तो अगर आप पर्यटक अगर आप घूमने आए, तो आपको विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि जैसे कि मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को एक नियम बनाना चाहिए इसके ऊपर, कि जो जो पर्यटक आए, तो अगर वो कहीं वो है तो है नियम, पर मानते नहीं है। जैसे कि कोई पर्यटक आए, अगर कूड़ा कवाड़ा कचरा जो है हर कहीं फेंक देते हैं, तो उन पर जो है जुर्माना होना चाहिए पर्यटक पे।
0: देखिए, हाँ वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार ने तो काफ़ी नियम बनाए हैं, लेकिन उसे मानना ना मानना ये तो हम आम इंसानों के हाथ में है
1: कि
0: ना?
1: अब
0: एक
1: देखो,
0: व्यक्ति।
1: जैसे कि मानो कि मैं आपके क्षेत्र में हूँगा, तो मैं आपके क्षेत्र में कूड़ा कचरा फेंक दूंगा, तो हम सोचेंगे अरे चलो हमने क्या है, हम आज के दिन आने कल हम चले जाएंगे और सब एंजॉय करके।
0: बिल्कुल
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: हम ये सोच

0: नहीं रखनी चाहिए हम आज के नए हम तो मेहमान की, क्योंकि ये भारत देश हमारा, ये अकेला नहीं। जैसे कि अब ये मध्य प्रदेश का भोपाल, ये मध्य प्रदेश ये आपका नहीं है, ये आपके क्षेत्र का नहीं है, पूरे भारत का हिस्सा है।
1: एक्चुअली बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरा भारत हमारा है और उसकी देखभाल करना, उसे स्वच्छ रखना हम सबका कर्तव्य है।
0: कर्तव्य है। जैसे कि अगर आप हिमाचल आते हैं तो ये है हिमाचल है, हिमाचल वासियों का, ये ही पूरे भारत का है,
1: बिल्कुल
0: पूरे
1: बिल्कुल
0: भारत का हिस्सा है। क्योंकि यहाँ से तो आदमी की क्या बोलते जान बच सकी थी पूरे। अब देखो अभी थोड़ी सी बात है, अभी पूरे देश में जो है लू चल रही है, 40-45 फुट तक जो है चल रहा है, तो ऐसे में क्या करते हैं हिमाचल या जम्मू कश्मीर घूमने आते हैं
1: बिल्कुल।
0: अगर हम उसी घर में अपने घर में आ रहे अपने देश में घूम रहे हैं तो हम अपने देश के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात जन जन तक पहुंचेगी और जो इस टाइप का कुछ अगर करते भी हैं तो वो नहीं करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। पूरा भारत हमारा है, उसकी सुरक्षा उसकी स्वच्छता का ध्यान हम सबको रखना पड़ेगा।
0: जो
1: ठीक है,
0: भोपाल सुन रहे हैं, जो पूरा जो देश सुन रहा है, तो आप हिमाचल आए, कृपया करके आप स्वच्छता का थोड़ा ध्यान रखिए।
1: हिमाचल जाएं या कहीं भी जाएं, स्वच्छता का ध्यान हम सबको रखने की बेहद आवश्यकता है, तभी हम अपने भारत को स्वच्छ रख पाएंगे। ठीक है ना, और स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्ते।
1: मंजरी भोपाल जी
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश में ही आप बात कर रहे हैं?
1: जी कार्य

0: संदलपुर से,
1: क्या नाम बताया आपने? कालीचरण
0: कालीचरण यादव संदलपुर से, आपके पास गाँव मेरा मेरा
1: यादव।
0: गाना। हाँ जी कालीचरण यादव, ग्वालियर पास गाँव मेरा
1: अच्छा।
0: जी, मेरा गाना सुनना फोन करके।
1: देखिए आप है ना, आज जो कॉल लगाए हैं वो बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, तो आज हम सिर्फ आपसे बात करेंगे, आपकी राय जानेंगे, आपसे अपने विचार साझा करेंगे और गीत आज हमारी पसंद के होंगे। ठीक है, तो कालीचरण जी ये बताइए कि आप घूमने जाते हैं बाहर कहीं अपनी फैमिली को ले?

0: घूम चुके हैं आप?
1: मैं तो कानपुर वगैरह इतने घूम गया हूँ। दिल्ली दिल्ली अरे अरे अरे फरीदाबाद या इधर गया था।
0: अच्छा, तो वहाँ कभी आप ऐसा पहाड़ों पर खूबसूरत वादियों के बीच में गए
1: पहाड़
0: हैं?
1: नहीं, मैंने पहाड़ कहा इधर पहाड़
0: नहीं, पहाड़ उधर नहीं है, पर किधर तो होंगे ना, कहीं तो गए होंगे कि नहीं गए?
1: इधर इधर है गांव, इधर पड़ती है गांव में, उधर हमारे पास में उधर पहाड़ है, ऊपर चढ़िया में घूमने।
0: तो गए हैं आप? आपको
1: हाँ
0: कैसा
1: पहाड़ में
0: लगता है
1: चढ़ा
0: वहां
1: गांव
0: पर
1: में,
0: जाकर?
1: बहुत अच्छा लगता है, खुली हवा मिलती है, ठीक ठंडक मिलती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ मंदिर में चढ़ गए थे। हाँ अच्छा लगता है।
0: चलिए
1: मैडम आप
0: कालीचरण,
1: कौन बोली मैडम?
0: मैं कविता रावत बोल रही हूँ।
1: अब आप प्रोग्राम दिए थे, अच्छा प्रोग्राम दिया, आपकी आवाज अच्छी है बहुत।
0: अच्छी है, धन्यवाद।
1: नहीं प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल अपना
1: आप
0: प्रोग्राम
1: प्रोग्राम
0: सुनिएगा,
1: सुनता
0: कल
1: जी, मैं
0: अपना प्रोग्राम सुनिएगा आप, ठीक है?
1: प्रोग्राम सुना, आज नाम बुलवा दी मैडम, गाइवे नाम बुलने हमारे, आप फरमान कार्यक्रम
0: बोल
1: आप
0: दीजिए।
1: छुट्टी ना, हमारे नाम ग्वालियर से 45 साल पुराना होता हूँ ग्वालियर का, मैं
0: जानते
1: पहुंच
0: हैं।
1: रहे, मेरे पत्र मिलने दे, मेरे को जब ग्वालियर से लेता हूँ तो मिलने दे, भोपाल पहुंच रहे मेरे,
0: ठीक, चलिए, ओके।
1: हमारे नाम बोल दे 2:30 बजे। हाँ
0: आपका नाम आएगा ना कल, आप प्रोग्राम सुनिएगा 11 बजे
1: फरमा
0: से।
1: फरमा से बोल दे, प्रोग्राम आज फरमा, क्या नाम
0: बिल्कुल
1: तुम्हारा नाम
0: बोलेंगे
1: बोल
0: हम, बिल्कुल बिल्कुल,
1: दे।
0: ठीक है कालीचरण जी।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी
1: हेलो, फोन करें गीत सुने दीदी। नमस्कार जी
0: नमस्कार। फोन करें गीत सुनने नहीं, बात आपकी गीत हमारे।
1: दीदी। दीदी हम ग्रामा पोस्ट तालगांव तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से दीदी मेहरबान सिंह नागल बोल रहे हैं
0: मेहरबान सिंह।
1: जी। दीदी
0: मेहरबानी आपकी, कॉल किया आपने।
1: बड़ी मुश्किल में कॉल लगती दीदी। कार्यक्रम सभी सुनते हैं आकाशवाणी भोपाल के,
0: ये
1: और
0: तो बात
1: बचपन से
0: सही है।
1: रेडियो का शौक है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं।
1: जी बढ़िया।
0: मेहरबान सिंह
1: हाँ
0: जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आज का विषय है कि पर्यटन के बदलते आयाम क्या है, उसका उद्देश्य, हम जब घूमने जाते हैं तो मन में क्या विचार आते हैं, ये बताइए, क्या क्या लाभ हैं उससे हमें।
1: बदल जाते हैं दीदी।
0: बताइए ना, आप जाते हैं कहीं घूमने,
1: हाँ
0: तीर्थ
1: देखिए
0: यात्रा
1: दीदी,
0: पे गए।
1: अगर हाँ समय समय जब समय मिलता है तो बिल्कुल जाते हैं, लेकिन अभी तो टाइम मिला नहीं, तो अभी तो नहीं जा पाए हैं।
0: इस बार नहीं जा पाए होंगे, लेकिन वैसे तो कभी गए हैं ना, तो क्या फर्क दिखता है आपको? आप पहले भी जाते थे और अब भी जाते हैं, तो क्या फर्क महसूस होता है आपको?
1: देखिए दीदी, जाते तो हैं और घूमते हैं, और थोड़ा अच्छा भी लगता है। और घूमने भी चाहिए।
0: बिल्कुल, देखते ऐसा होता है ना, जब हम अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं तो थोड़ी सी कभी कभी बोरियत होने लगती है, और जब कुछ समय के लिए हम बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा नयापन आता है, बदलाव आता है ना? बिल्कुल,
1: बिल्कुल बिल्कुल हकीकत।
0: और अब नए आयाम में यही फर्क बहुत आया है कि जैसे पहले हम लोग है ना, कहीं बाहर जाते थे तो बहुत सारा पैसा रख के ले जाना पड़ता था, फिर उसकी हिफाजत करने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती थी कि अरे पैसा रखा है, पैसा रखा है पास में, कहीं निकल ना जाए, कहीं कोई निकाल ना ले, है ना?
1: जी
0: आजकल
1: बिल्कुल
0: ये हो गया है, सबके पास है ना, सब पेटीएम गूगल पे यूज करते हैं, तो आसानी से कहीं भी कैशलेस होकर जा सकते हैं, है ना?
1: बिल्कुल
0: फोन के जरिए पेमेंट करते हैं, छोटे छोटे पेमेंट भी करना होता है तो लोग अधिकतर फोन के जरिए ही करने लगे हैं, तो ये काफी सुविधाजनक हो गया है हम सभी के लिए।
1: जी बिल्कुल। ये तो बात हकीकत है दीदी, क्योंकि अब तो पहल से सुविधा बहुत हो गई है, क्योंकि अब तो
0: बिल्कुल।
1: मोबाइल लेन देन में आसानी हो रही, कहीं भी अपन कैश ले सकते हैं।
0: हाँ, हम दुनिया के किसी भी कोने में होते हैं तो वीडियो कॉल के माध्यम से हम सारे अपने लोगों से संवाद भी कर पाते हैं, है
1: बिल्कुल
0: ना?
1: हकीकत में
0: ठीक है, चलिए बस।
1: आत्म विचार दिया आपने दीदी। और जो आप दीदी, हम जो कहना पूछना चाह रहे हैं, कौन दीदी बात कर रही हैं?
0: कविता रावत।
1: जी कविता जी, आपसे शायद हमारी दूसरी बार बात हो रही हो। जो आप लोग बड़ी मेहनत से बातचीत करते हैं, और अच्छी प्रस्तुति रहती है आप लोगों की।
0: जी, थैंक यू वेरी मच मेहरबान सिंह जी, और
1: जी
0: एक हफ्ते बाद
1: दीदी
0: दोबारा कॉल
1: धन्यवाद।
0: कीजिएगा।
1: जी बिल्कुल जरूर लगाएंगे, हम तो सुनते रहते हैं कार्यक्रम, आप
0: जी
1: लोगों की बातचीत अच्छी लगती है दीदी।
0: जी
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद,
1: दीदी, नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्कार
0: नमस्ते।
1: नमस्कार नमस्कार मैम, कैसे हो?
0: हम अच्छे हैं। पहले आप अपना शुभ नाम तो बताइए और कहाँ से
1: हाँ, मैं
0: बोल
1: कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी बोल रहा हूँ। मैं मनमोजी।
0: रहे। नियाज मोहम्मद
1: हाँ
0: जी,
1: जी, फरमाइए मैम, कैसे हैं आज का
0: हम तो
1: त्योहार?
0: अच्छे हैं। आप बताइए कैसे हैं आप।
1: हाँ,
0: आपका
1: बहुत
0: त्योहार
1: अच्छा।
0: कैसा बीता परसों आप?
1: और त्योहार का तो बहुत अच्छा देखा है हमारा। हम गांव से देहात में थे अभी, तो बहुत अच्छा मिलनसार गांव देहाती होता है ना। तो अपने अभी इंदौर में
0: बिल्कुल।
1: रहता हूँ, मगर मैं वहाँ अभी यहाँ बेटद्र गांव में आया हूँ। मैं
0: अच्छा,
1: अपना गांव है जहाँ
0: हाँ
1: से अभी अभी मेरे भाई ने भी फोन किया था, वो वहाँ से भी बहुत श्रोता, बहुत अच्छे दर्पण में बहुत अच्छा आता था पहले। आप पढ़ती थी, सर भी पढ़ते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल,
1: कार्यक्रम आपका जो होता है मैम, बहुत
0: हाँ
1: अच्छा रहता है। कहते हैं ना कि जीना तेरी गली में रहना, उसी
0: बिल्कुल
1: में जैसे प्यार के रंग भरे प्यारे अल्फाजों में। आपकी आवाज बड़ी दिलों की बातों, आवाज बड़ी सुरीली होती है सब।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: हाँ, वो बहुत अच्छी लगती है। आपका जो प्रसारण का जो है, ये कार्यक्रम जो बहुत अच्छा, श्रोताओं को एक नई ऊंचाई की तरफ ले जा रहा है।
0: बिल्कुल। और हम अपने श्रोताओं से बात करते हैं तो कई बार हमें अपने श्रोताओं की बातें भी बड़ी अच्छी और काम की लगती हैं, तो वो तो परस्पर एक दूसरे से विचार साझा करके सभी को फायदा होता है। हमें भी आप लोगों की बातचीत से काफी फायदा होता है।
1: बिल्कुल, ये बात तो एक दूसरे से दोनों का तालमेल
0: बिल्कुल,
1: होगा
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: इसका एक रंगत रंगत बन जाती।
0: बिल्कुल मंसूरी जी।
1: हाँ
0: और अभी हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे
1: जी,
0: हम घूमने जाते हैं पर्यटन के लिए, तो
1: बिल्कुल
0: उस
1: बिल्कुल।
0: के जो चेंज हुए हैं, बदलते आयाम, वो आपको कैसे लगते हैं? पहले की तुलना में अभी
1: मैम
0: आपको क्या फर्क महसूस होता है?
1: देखो, पहले हमारी अपनी अपनी पीढ़ी के वक्त समय इतना साधन नहीं थे, और युवा पीढ़ी के हर जगह वक्त समय है। उनका जो प्रभावित है और हमारे जो प्रभावित जो शब्द है, उनमें बहुत काफी अंतर हो गया।
0: जैसे बताइए आप।
1: जैसे आप, जैसे युवा वर्ग है, युवा वर्गों को घूमने को नई नई चीजों से होती है। जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी और भाई यहाँ गर्मी लग रहा है, तो वहाँ चले, वहाँ पर उस थोड़ा सुकून मिल सकता है आप
0: हिल
1: लोगों को।
0: स्टेशन वगैरह, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: हाँ, तो ये वहाँ सुकून मिल सकता है आप लोगों को मिलने से। तो वास्तव में जाना भी चाहिए, घूमना भी जरूरी है। मनुष्य की मानसिक जीवन को संतुलन करने के लिए थोड़ा सा घूमना भी बहुत जरूरी हो गया।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा नियाज जी, धन्यवाद
1: शुक्रिया
0: कॉल
1: मैम।
0: करने के
1: मैम
0: लिए।
1: आपका नाम, शुभ नाम थोड़ा सा
0: कविता
1: बता
0: रावत,
1: सकते हैं?
0: कविता रावत।
1: आज माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बढ़िया मैम, शुक्रिया आपका। आप
0: जी
1: फोन,
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद आप फोन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। इसके साथ ही अब अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत को, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनाधिकृत गतिविधियों को हटाने का आदेश दिया गया है। ये निर्णय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय सुरक्षा सीमा बैठक में लिया था। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक चेतना जगा ने लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के सशक्त माध्यम के रूप में काम किया है। प्रदेश में 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा की तारीखें बदल दी गई हैं। पहले परीक्षा 1 से 6 जून के बीच होनी थी, लेकिन अब ये 16 से 23 जून तक होगी। इसके बाद 24 से 28 जून के बीच कॉपियां जांची जाएंगी। भोपाल के भारत भवन में सदा नीरा जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन 2 जून तक किया जा रहा है। आज शाम 5:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन मालवी लोकायन से शुरू होगा। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के बीच मौसम ने राहत भरा रुख अपनाया है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है श्रोताओं की पसंद के गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम श्रोताओं की पसंद के गीत से, जो कि मौसम के अनुसार है। आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की है, फिल्म सिंदूर, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर, सरिता गवांडकर, सिद्धांत गवांडकर, प्रिंस एकांश गवांडकर, सुखी, विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवांडकर, वैशाली गवांडकर, श्वेता, सुमेध गवांडकर, कुमारी ध्वनी गवांडकर, पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपिका कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा की। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का।

लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे सिंदूर फिल्म का गीत। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में श्रोताओं आपको सुनवाते हैं आपके पसंद किए हुए गीत, जो कि आप पत्रों के माध्यम से अपनी पसंद हमें भिजवाते हैं। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म कटी पतंग से। आवाज किशोर कुमार की है, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत आरडी बर्मन का। और पसंद करने के लिए अपने पत्र के माध्यम से अपनी फरमाइश आपने हमको भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, आदित्य शिवानी, शिवा श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद भाई फूलवाले, इकबाल अहमद फूलवाले, नुरेशा बेगम फूलवाले, काप सहेड़ा नई दिल्ली से, नशरीन आजाद आसमान, आमना आसमा परी और इमरान अहमद पागवान। तो आइए आप सबकी पसंद का गीत सुनते हैं, जो है फिल्म कटी पतंग। आवाज़

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हम भेजने वाले श्रोताओं के नाम है नई सड़क एमपी शाजापुर से एमएम राजावत राज मधु राजावत राशि रक्षित चितरंजन कमल उमेश सरोज आरती रेखा रितिका रिचा स्वीटी सागर रिया रीत ऋषभ राजावत एवं उनका समस्त राजावर परिवार। इसी गीत की पसंद हमें मिली है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया प्रियंका पंचोलिया गुनगुन संप्रीत हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया की। इस गीत की एक पसंद हमें ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम कुसुम नेताम की मिली है और गांधी चौक रोपड़ पंजाब से पसंद मिली है हरदेव मीका बलविंदर बिरक चेतक बिरक और मीका बिरक की। आप सब सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फरिश्ता या कातिल फिल्म का गीत। शब्द रचना अनजान की है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। तो आइए सुनते हैं आप सबकी।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फरिश्ता या कातिल फिल्म का गीत। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश में आप भेजते हैं हमें अपनी फरमाइश के पत्र और हम सुनवाते हैं।

आशा भोसले, चित्रकार और साथियों की। शब्द रचना भरत व्यास की है और संगीत सी रामचंद्र का है। पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं बिल हरी खेरा से, संतोष ठाकुर, काशी तिवारी, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल मुन्ना खान एवं ग्राम पहरुआ से राम कुमार लोधी, गोविंद यादव। इसी गीत को पसंद किया है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा और साइना शर्मा ने। इस गीत की एक पसंद हमें मिली है करियादंड हट्टा जिला बालाघाट से हलास राम कटरे और नानेश्वरी कटरे की। इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और मेहराजा आजाद नगर लखसर हरिद्वार से। तो आइए आप सबकी पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: जिसे हम सुनवा रहे हैं फिल्म नवरंग से।
1: कारी कारी कारी अंधियारी थी रात, एक दिन की बात, जब सघन गगन से घन न न न न न न गरज उठी, सावन की घटा घूंघट में छुपा कर, चपल चपल बिजली की छटा, एक नार करके सिंगार, एक नार तीखी तलवार, या थी वो कटार करके सिंगार, चली उस पार जहां थे उसके किसन मुरार, चमक झुम झुम, रमक झुम झुम, चमक झुम झुम।

कानन कानन पवन चले झनन झनन झांझर बोले अमृत घोले दिल न डोले कामिनिया चले हौले हौले नयन झुके पग न रुके बेला मिलन की न टले अचरा ढले दीपक जले पिया मिलन गोरी चले छुम छुम छुम छमक छमक झुम झुम झुम झमक झमक छुम

की रे बरसात, उठे घन घोर घटा करे शोर पपीहा। पी है कहाँ मेरा पी है कहाँ, कहे गोरी के प्राणों का प्राण पपीहा। मन में लगन लगी मन में अगन जगी, बंद किए दोना नैना उभारे, प्यार पुकारे सो प्रीत किनारे, चली है वो सांसों की डोर सा।

नदियाँ पहाड़ कर पार गोरी नार आई प्रीतम के द्वार अभिसार करने भइयों में बांध अपने प्रीतम की साध लगी प्राण।

0: आशा भोसले, चितलकार और साथियों के गाए नवरंग फिल्म के गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना। हो, हो, हो, हो, हो, हो, हो, हो।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

तो प्रस्तुत है धारावाहिक की चौथी कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना कि मुश्ताक सायरे को अपने घर वापस ले जाने के लिए आता है, लेकिन फाता सायरे को वापस नहीं भेजती है और उसे ससुराल वालों के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। मुश्ताक खाली हाथ वापस लौट जाता है। अब आगे।

0: अम्मी।
1: मुश्ताक आ गया बेटा।
0: हाँ अम्मी।
1: अरे अकेला आया है, सारे नहीं आई?
0: नहीं अम्मी, सारे नहीं आई।
1: क्यों भला, तू गया था ना?
0: हाँ गया तो था, पर वो नहीं आई अम्मी। कह रही थी कि कुछ दिन और रहेगी अपनी अम्मी के घर।
1: बहुत दिन बाद गई थी, सो मन कर गया होगा रहने को। अच्छा चल हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना निकाल देती हूँ।
0: नहीं अम्मी अभी रहने दो, मन करेगा तो खा लूंगा।
1: अच्छा हसन बट भाई और फाता कैसी हैं, और उनकी तबीयत तो ठीक है ना?
0: हाँ अम्मी सब ठीक है, सलाम भेजा है आप लोगों को।
1: अल्लाह सबको सलामत रखे।
0: अम्मी मैं कमरे में जा रहा हूँ।
1: खाना नहीं खाएगा क्या?
0: नहीं अभी नहीं, थोड़ी थकावट लग रही है।
1: ठीक है, जब तेरे अब्बा आ जाएंगे तो खा लेना।
0: अम्मी अब्बा गए कहाँ हैं?
1: कह कर तो नहीं गए, कहीं बैठ गए होंगे गप्पे मारने। इस उम्र में बचा ही क्या है करने को।

0: कौन?
1: अरे मैं हूँ।
0: आ गए?
1: हाँ, वो जानवरों के चारे के लिए गया था। असलम को कह दिया है, वो कल पहुंचा देगा।
0: चलो, अच्छा किया।
1: सुनो,
0: हाँ?
1: ये मुश्ताक सारे को लेने गया था, आया नहीं अभी तक क्या?
0: थोड़ी देर पहले ही आया है।
1: है कहाँ?
0: अपने कमरे में है।
1: सारे?
0: सारे नहीं आई।
1: क्या? सारे नहीं आई है? मुश्ताक तो लेने गया था ना?
0: गया तो था, पर सारे नहीं आई।
1: वहाँ सब सलामत तो है ना?
0: मुश्ताक तो कह रहा था कि सब सलामत है।
1: तो फिर सारे क्यों नहीं आई?
0: कुछ दिन और रहना चाहती है अम्मी के पास।
1: कुछ और बात तो नहीं हुई ना वहाँ?
0: और कुछ तो बताया ही नहीं मुश्ताक ने। जो बताया था वो मैंने आपसे कह दिया।
1: तो ठीक है, अरे कुछ दिन रहकर ही सारे को बुला लिया जाएगा।
0: मुश्ताक को बुला लेती हूँ, उसने खाना भी नहीं खाया।
1: ठीक है, बुला लो, आज साथ ही खाना खा लेंगे।

0: मुश्ताक नहीं आया?
1: नहीं, मुश्ताक की तबीयत ठीक नहीं।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: हुआ तो कुछ नहीं, पर परेशान लग रहा है।
0: अरे पूछा नहीं, क्यों परेशान है वो?
1: पूछा तो था, पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया।
0: ये क्या बात हुई बोला?
1: अजी, जवान बेटे पर कोई बात बताने को जोर भी तो नहीं डाल सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे के ना आने से मुश्ताक थोड़ा परेशान है, इसीलिए ऐसा कर रहा है।
0: ठीक है, ये हो सकता है, हो सकता है।
1: हाँ, अभी अभी तो निकाह हुआ है, सो सारे की याद तो आएगी ही।
0: फजी, मुश्ताक का खाना उसके कमरे में ही भेज दो और मेरी थाली में निकाल दो। ठीक है, बाकी बातें खाते हुए करेंगे।
1: हाँ, मुंह हाथ धो कर आओ, मैं खाना निकालती हूँ।
0: ठीक है, अरे रे जाओ, पहले मुश्ताक को खाना दियाओ।
1: तुम बैठो तो, मैं अभी देकर आती हूँ।

0: जी
1: अरे सच कह रहा हूँ फजी, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है।
0: कहते तो तुम ठीक हो जी, पर इस बुढ़ापे में हम कर भी क्या सकते हैं?
1: नहीं, कुछ भी नहीं, बस

0: तो सहारा है।
1: सच कहती हो फजी, बच्चे अब अपने फैसले खुद लेने लगे हैं और उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल है।
0: क्या कर सकते हैं हम, मुश्ताक को ही लो, सारे नहीं आ

0: इस पर हमारा कोई अख्तियार भी नहीं है।
1: छोड़ो भी इन बातों को, अल्लाह ने जो नसीब में लिखा होगा वही होगा, कुछ नहीं बदलेगा, ना मेरे कहने से ना तुम्हारे कहने से।
0: अल्लाह ताला पर ही तो भरोसा है, जिससे मन को तसल्ली होती है, नहीं तो इन बच्चों के बर्ताव से तो।
1: और रोटी दूं?
0: नहीं, रहने दो।

0: परेशानी हो तो रहने देना।
1: अजी परेशानी किस बात की, अभी बना देती हूँ।
0: सुनो वो कुछ लकड़ियां देती जाना, अलाव में आग जला दूं। अब ये ठंड कुछ बढ़ गई लगती है।

0: क्या कर रही हो फजी?
1: अरे मेहर, आओ आओ, बर्तन मांज रही हूँ।
0: क्यों, बहू कहाँ गई?
1: मायके गई हुई है, उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, सो मिलने गई थी।
0: तो क्या अभी तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई है?
1: तबीयत तो ठीक हो गई है, पर सारे कुछ दिन मायके में रहना चाह रही थी, सो अभी आई नहीं है।
0: एक बात कहूँ फजी, बुरा तो ना मानोगी?
1: ऐसी भी क्या बात है बीबी कि बुरा मानू, पहले बात तो कहो।
0: अपने पर ना लेना फजी, ये पहले कह देती हूँ। हाँ
1: बीबी, तुम बात तो कहो, यूं पहेलिया क्यों बुझा रही हो?
0: फजी, आजकल की लड़कियों का क्या कहूँ, दिमाग खराब हो गया है।
1: अरे बात क्या हुई?
0: बात क्या होनी थी, तुम नहीं पहचानती, मेरी दूर की रिश्तेदार थी, उसने तो हद ही कर दी।
1: मेहर, बताओ तो हुआ क्या?
0: वो अपने शौहर को छोड़ दूसरे लड़के के साथ चली गई।
1: अरे रे, ये तो बुरा हुआ बीबी, पता नहीं आज के बच्चों को होता क्या जा रहा है।
0: फजी,

0: मेरी मान, तू बहू को बुला ले। ज्यादा दिन लड़की मायके में रहे तो लड़की का सर घूम जाता है। और अपने लड़के को भी थोड़ा समझा कि बीवी पर लगाम रखे, बुरा ना मानना। सुना तो मैंने यही है कि अपनी अम्मी की बीमारी का बहाना बनाकर मायके में रह रही है।
1: मेहर बीबी, तुम्हारा कहना सही हो सकता है, पर सब के लिए नहीं। मेरा बेटा और मेरी बहू ऐसे नहीं हैं कि उन पर दबाव बनाने के लिए मुझे कुछ करना पड़े।
0: अरे फजी, तुम तो बुरा मान गई। मैं तो यूं ही कह रही थी, तूने तो बात अपने पर ले ली।
1: बीबी बुरा नहीं मानती, पर
0: परवर छोड़ फजी, मैंने दुनिया देखी है और उसी तजुर्बे से कहती हूँ। तेरी बहू ठीक है, तेरा कहा मानती है, पर सबका नसीब तेरे जैसा तो होता नहीं कि बहू की सेवा पाए।
1: मेहर बीबी, बहू पर दबाव बनाने से बहू सेवा करेगी ही, अब ये बात तो कोई तय नहीं है ना।
0: फजी, तू मेरी बात समझ नहीं रही है कि मैं कह क्या रही हूँ। लोग कहते हैं कि मुश्ताक को घुमाकर बहू मायके में मजे कर रही है।
1: किसने कहा तुमसे ये सब झूठ है?
0: अरे ये तो मैं भी जानती हूँ कि झूठ है, पर कहने वालों के जुबान थोड़े ही बंद की जा सकती है। उनके मन में जो आए सो कहते हैं, पर उनकी बातों पर तू ध्यान न देना।
1: मेहर बीबी, मैं जानती हूँ कि मेरी बहू अच्छी है और मुश्ताक को भी प्यार करती है। जमाने को क्या, किसी का भला तो देखा जाता नहीं, बकने लगते हैं।
0: छोड़ो भी उनकी बातों को। सुना है कि मुश्ताक बहू को लेने गया था, ये बात तो सच है ना?
1: हाँ, गया तो था मुश्ताक,
0: फिर भी बहू नहीं आई, यही ना?
1: अरे अम्मी की बीमारी में गई थी, कुछ दिन रहना चाहती थी सो नहीं आई, और क्या।
0: लोग ये तो नहीं जानते, बस कह देते हैं कि
1: क्या कहते हैं?
0: यही कि मुश्ताक का अपनी बीवी पर कोई जोर नहीं चलता। बीवी जो कहती है मुश्ताक वही करता है, गुलाम हो गया है।
1: देखो बीबी, जिनके पास कोई काम नहीं होता ना, उन्हें ही ये फालतू बातें सूझती हैं। और एक बात कह देती हूँ, हाँ बुरा ना मानना, तुम जहाँ भी ये फालतू बातें सुनती हो ना, अल्लाह कसम अपने तक ही रखा करो बीबी। मुझे इन फालतू बातों से कोई लेना देना नहीं, मैं अपने बेटे मुश्ताक को जानती हूँ और अपनी बहू सारे को भी जानती हूँ।
0: नाराज ना हो फजी, लोग तो यूं ही बकते हैं। मैंने तो जो सुना था वही कह दी, बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना।
1: तुम भला क्यों माफी मांग रही हो मेहर बीबी? वक्त आएगा तो वे लोग देखेंगे कि घर क्या होता है और घर को चलाया कैसे जाता है।
0: अच्छा फजी, मैं तो अब चलूंगी, बड़ी देर हो गई।
1: थोड़ी देर बैठो, चाय तो पीती जाओ।
0: फिर कभी पी लूंगी, अभी तो चलती हूँ। और हाँ, मेरी बातों का बुरा ना मानना, तुम्हें अपना समझती हूँ इसीलिए कह देती हूँ।
1: कोई बात नहीं, अपनों की बातों का भी कोई बुरा मानता है क्या?
0: अच्छा अब चलती हूँ, खुदा हाफिज।
1: हाफिज खुदा।

0: Fuzzy? Fuzzy? Fuzzy? क्यों क्या हुआ फजी? यूं गुमसुम से क्यों बैठी हो?
1: नहीं कुछ नहीं, यूं ही बैठी हूँ।
0: यूं ही बैठी हो तो गुमसुम सी क्यों? कोई बात हुई क्या? भाई तुम्हें इस तरह से उदास बैठे पहले तो नहीं देखा।
1: छोड़ो भी बातें बनाना।
0: अरे अरे तुम तो नाराज हो गई। बोलो बोलो क्या बात है?
1: नहीं कुछ भी तो नहीं।
0: फजी तुम परेशान हो और तुम्हारी परेशानी साफ साफ पता चल रही है। ठीक है अब तुम बताना ना चाहो तो भाई तुम्हारी मर्जी।
1: सारे को बुलवा लेते।
0: सारे को बुलवा लो? क्यों क्यों बोला? अरे वो मायके ही तो है, कहीं और तो नहीं?
1: सारे है तो मायके में, पर लोगों को क्या कहें।
0: अरे इसमें लोगों को कहने वाली क्या बात हो गई?
1: आसपास के लोग क्या क्या बातें करते हैं तुम्हें क्या पता।
0: लोगों का क्या है? वैसे हुआ क्या जो तुम इतनी जिद कर रही हो कि सारे को बुला लूं?
1: आज मेहर बीबी आई थी, उन्होंने ही बताया कि लोग सारे और मुश्ताक को लेकर क्या क्या कहते हैं।
0: अरे तुम भी किसकी बात लेकर बैठ गई? अरे वो मेहर बीवी को तो बस जो मन में आया बक दिया, ना आगे सोचा ना पीछे, यूं ही मनगढ़ंत बोलती रहती है।
1: पर सारे को मायके गए भी तो कितना समय हो गया।
0: अरे भाई सारे अपनी अम्मी के घर ही तो है, कहीं और तो नहीं?
1: देखो जी निकाह के बाद मायके में इतने दिन रहना अच्छा नहीं होता। अब मुश्ताक को बोल दो कि सारे को ले आए।
0: ठीक है मुश्ताक को तुम ही बोल दो, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
1: ठीक है मुश्ताक घर आता है तो कहूंगी कि कल ही सारे को लेने चला जाए।
0: ठीक है जैसा तुम ठीक समझो। और हाँ देखो देखो ये एक बात मैं कह देता हूँ, तुम मेयर बीवी जैसी औरतों की बातें मत सुना करो।
1: अरे मैं कोई सुनने थोड़े ही गई थी, वो तो खुद आई थी यहाँ।
0: देखो फजी लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो।
1: कैसे ना दूं, आखिर रहना तो इन्हीं लोगों के बीच में है।
0: तो ठीक है हसन भट्ट को पैगाम भेजता हूँ कि वो सारे को भेज दे।
1: हाँ मुश्ताक को भी कहती हूँ कि सारे को लेने के लिए चला जाए।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकियां की चौथी कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीत दिया था मोहनलाल ने, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अक्रम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे नीलम, लोकेश, सतीश कक्कड़ और कोइना। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

पेश हैं इस घंटे की खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाया है। इसके तहत सरकारी तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसान कल्याण वर्ष के तहत अब प्रदेश में सिर्फ 5 रुपए में सिंचाई पंप का नया बिजली कनेक्शन मिल रहा है। बाकी की राशि किश्तों में चुकानी होगी और अधिक जानकारी के लिए बिजली दफ्तर या कॉल सेंटर नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है। उज्जैन संभाग के 11 मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए 200 करोड़ रुपए के टेम्पल बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इन मंदिरों के जीर्णोद्धार पर कुल 1100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आगामी 31 जुलाई तक टेम्पल बॉन्ड जारी कर दिए जाएंगे। भोपाल के भारत भवन में सदानीरा जल रंग संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो 2 जून तक चलेगा। आज शाम 5:30 बजे से आयोजन मालवी लोक गायन के जरिए शुरू होगा। और मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना, नीमच और प्रदेश के कई जिलों में ओले और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल ज्यादातर जिलों में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। आप सुन रहे थे।

सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी के नजरों में। इस सुविचार के साथ महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को कल्पना शुक्ला का नमस्कार। बहनों, आज का युग वैश्वीकरण का युग है। दुनिया के सभी देश एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। जब विभिन्न देश आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय क्षेत्रों में मिलकर कार्य करते हैं, तो इसे वैश्विक सहभागिता कहा जाता है। यह सहभागिता विश्व में शांति, विकास और सहयोग को बढ़ावा देती है। वैश्विक सहभागिता के माध्यम से देश अपने ज्ञान, तकनीक और संसाधनों का आदान प्रदान करते हैं। इससे नई खोजों और विकास कार्यों को गति मिलती है, जैसे कि चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान और व्यापार के क्षेत्रों में और देशों के बीच सहयोग से मानव का जीवन अधिक सुविधाजनक बना है। प्राकृतिक आपदाओं, महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का समाधान भी अकेले किसी एक देश द्वारा संभव नहीं है। इन समस्याओं से निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर कार्य करना पड़ता है। कोरोना महामारी के समय विश्व के कई देशों ने एक दूसरे की सहायता की, जो वैश्विक सहभागिता का अच्छा उदाहरण है। वैश्विक सहभागिता से विभिन्न देशों की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को जानने का अवसर मिलता है। विद्यार्थी देशों में शिक्षा प्राप्त कर नए अनुभव हासिल करते हैं। इससे आपसी समझ और भाईचारा बढ़ता है। बहनों, वैश्विक सहभागिता आधुनिक विश्व की आवश्यकता है। यह केवल देशों के विकास के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। बहनों, सभी देश मिलजुल कर कार्य करें तो विश्व में शांति, समृद्धि और सहभागिता स्थापित की जा सकती है। बहनों, गीत संगीत जो सभी के दिलो दिमाग को तरोताजा करते हैं, तो आइए सुनते हैं गीत साथी हाथ बढ़ाना, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम है नया दौर।

0: गीत साथ ही हाथ बढ़ाना, जिसे गाया था आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम नया दौर।
1: बहनों, आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर करिमा तिवारी, जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जबलपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आसीन हैं, जो टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में है। अच्छा करिमा जी, ये बताइए, जैसे कि गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा कौन सी बीमारियां फैलती हैं?
2: गर्मी के मौसम में, चूंकि गर्म पूरा वातावरण गर्म होता है, इसलिए गर्मी के मौसम में लू लगना, डिहाइड्रेशन, दस्त, उल्टी, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग और त्वचा संबंधी बीमारियां अधिक फैलती हैं।
1: अच्छा, ये जैसे कि लू लगने के मुख्य कारण क्या होते हैं?
2: लू लगने के मुख्य कारण है तेज धूप में अधिक समय तक रहना, शरीर में पानी की कमी हो जाना, चूंकि

0: बहुत पसीना आता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर से पानी की कमी होने लगती है, गर्म हवाओं के संपर्क में आना और सिर ढककर बाहर ना निकलना लू लगने के मुख्य कारण।
1: जी अच्छा कर्मा जी, जैसे कि ये गर्मी से बचने के लिए लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
0: लोगों को अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, हल्के सूती कपड़े पहनने चाहिए, दोपहर की तेज धूप से बचना चाहिए और बाहर निकलते समय छाता या टोपी का उपयोग करना चाहिए और जब भी घर से बाहर निकले तो एक गिलास पानी पी के निकले।
1: अच्छा,
0: आने के बाद तो पानी ना पिए लेकिन जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो पहले एक गिलास पानी पी के निकले।
1: अच्छा, शरीर में पानी की कमी से क्या समस्याएं हो सकती हैं?
0: पानी की कमी होने से चक्कर आना, कमजोरी, सिर दर्द, थकान, बेहोशी और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती
1: है। अच्छा गर्मी जी, जैसे कि गर्मी में कौन कौन से पेय पदार्थ लाभदायक होते हैं? आजकल गर्मी में जैसे कि पेय पदार्थ लोग ज्यादा पीते हैं, तो कौन से पेय पदार्थ लाभदायक होते हैं
0: जो इस मौसम में अवेलेबल होते हैं? पहली बात तो उन पेय पदार्थों को पीना चाहिए, जैसे गर्मी में नींबू का पानी, नारियल पानी, छाछ, लस्सी, आम पना, ताजे फलों का रस, गन्ने का रस, ये सभी लाभदायक है।
1: अच्छा, ये गर्मी के मौसम में लोग जैसे बाहर का खाना, अब आजकल का चलन ही है कि लोग बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, तो गर्मी क्या गर्मी के मौसम में बाहर का खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्या?
0: बिल्कुल हाँ, गर्मी में बाहर का बासी या खुला खाना जल्दी खराब हो जाता है जिससे फूड पॉइजनिंग और पेट की बीमारियाँ हो सकती हैं।
1: अच्छा, ये डिहाइड्रेशन के मुख्य लक्षण क्या होते हैं?
0: डिहाइड्रेशन के मुख्य लक्षण है अत्यधिक प्यास लगना, मुंह सूखना, कमजोरी, चक्कर आना, कम पेशाब आना और जो पेशाब का कलर होता है वो बहुत डार्क येलो हो जाता है।
1: अच्छा,
0: और शरीर में थकान महसूस होना डिहाइड्रेशन के मुख्य लक्षण है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, गर्मी के मौसम में संतुलित भोजन करें, पर्याप्त पानी पिए, हमेशा कभी भी जाएं तो पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहे, साफ सफाई रखे, तेज धूप से बचकर रहे, तभी हम सब स्वस्थ रह सकते हैं।
1: सचमुच गर्मा जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और मैं आशा करती हूँ कि

0: बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे भी, बहुत आनंद आया। नमस्कार।
1: बहनों, जल मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। पृथ्वी पर जीवन जल के बिना संभव नहीं है, लेकिन आज बढ़ती गर्मी, जनसंख्या वृद्धि और जल के अत्यधिक उपयोग के कारण भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। कई क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गर्मी में तापमान बढ़ने से जल स्रोत तेजी से सूखने लगते हैं। लोग पानी, खेती और अन्य कार्यों के लिए अधिक मात्रा में पानी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा वर्षा जल का सही ढंग से संरक्षण न हो पाना भी जल स्तर गिरने का मुख्य कारण है। पेड़ों की कटाई, बढ़ता शहरीकरण और कंक्रीट सड़कों के कारण वर्षा का पानी जमीन में नहीं समा पाता, परिणाम स्वरूप भूजल का पुनर्भरण नहीं हो पाता और जल स्तर नीचे चला जाता है। बहनों, जल स्तर कम होने से कुएं, तालाब और हैंडपंप सूखने लगते हैं। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, जिससे फसलें प्रभावित होती हैं और कई स्थानों पर लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। बहनों, इस समस्या के समाधान के लिए जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बारिश की पानी जमीन में पहुंच सके। पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए क्योंकि वह जल संरक्षण में सहायक होते हैं। हमें पानी का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए और अनावश्यक जल व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। खेतों में सिंचाई जैसे आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। सरकार और समाज दोनों को मिलकर लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। बहनों, जल ही जीवन है। यदि आज हमने जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में जल संकट और भी गंभीर हो सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पानी बचाए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे।

सामूहिक प्रयासों से ही हम गिरते जल स्तर की समस्या का समाधान कर सकते हैं। बहनों आइए सुनते हैं गीत आया सावन झूम के, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है आया सावन झूम के।

हमने सुना गीत आया सावन झूमके, जिसे गाया था मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम आया सावन झूमके।

बहनों, मुझे पता है आपको इंतजार है आज के व्यंजन का, तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ आम का पना। बहनों, आम पना भारत का एक प्रसिद्ध और पारंपरिक पेय है, जो विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में बनाया और पिया जाता है। यह कच्चे आम से तैयार किया जाता है और शरीर को ठंडक पहुंचाने में बहुत लाभदायक माना जाता है। इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है, इसलिए बच्चे और बड़े सभी इसे पसंद करते हैं। तो आइए जानते हैं आम पना बनाने के लिए किन सामग्री की जरूरत पड़ती है। सामग्री है कच्चा आम, चीनी, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, पुदीने की पत्तियां, पानी और बर्फ के टुकड़े। विधि है कच्चे आम को अच्छी तरह से धो लें, उसके बाद आमों को कुकर या बर्तन में उबाल लें और ठंडा होने पर छिलका हटा दें। फिर आम के गुदे को मिक्सी में डालें और उसमें चीनी, काला नमक, भुना जीरा और पुदीने की पत्तियां मिलाएं और थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से पीस लें। तैयार मिश्रण को बड़े बर्तन में निकालें और ठंडा पानी मिला दें। अब गिलास में बर्फ डालकर ठंडा ठंडा आम का पना परोसें। बहनों, आम का पना शरीर को ठंडक पहुंचाता है, लू से बचाने में मदद करता है, पाचन के लिए लाभदायक होता है और विटामिन सी से भरपूर होता है। बहनों, आइए सुनते हैं गीत पीपल के पतवा पर, जिसे गाया है सोनू निगम और जसपिंदर नारुला ने। फिल्म का नाम है सूर्यवंशम।

बहनों, अभी हमने सुना गीत पीपल के पतवा पर, जिसे गाया था सोनू निगम जसपिंदर नरुला ने। फिल्म का नाम सूर्यवंशम। बहनों, अब इसी के साथ समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्वीकारें कल्पना शुक्ला का

0: भारत की संस्कृति का दर्पण, प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन, कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

रोता था। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी, लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है। जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है। एवरग्रीन भी है, कहानी नेवर बीन टोल्ड।

0: भी है, है also gen old, नई पुरानी, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको इसमें सुनवा रहे हैं संध्या।

संध्या पाठक की थी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है सुहाग गीत आवाज संध्या पाठक की। आज का ये

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत और आज हम आपको सुनवा रहे हैं संध्या पाठक के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए एक बैलन गीत, आवाज संध्या पाठक की और

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं लल्लू राम शुक्ला के गाए कुछ भजन। अभी आपने सुनी कभी

0: अभी आप सुन रहे थे नीरज की रचना, आवाज़ ललूराम शुक्ला की। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की उपस्थिति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है अंतराल का।
1: आकाशवाणी भोपाल से हर शाम रोजाना 5:02 पर सुनिए युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। ट्यून कीजिए मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ पर या फिर न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर। लॉगिन करें और सुने ज्ञान सूचना मनोरंजन की त्रिवेणी युवाओं की वाणी युववाणी प्रतिदिन शाम 5:02 पर।
2: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
1: आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी में हर शाम 5:02 पर सुनिए शानदार नगमे, ज्ञान विज्ञान और करियर की बातें, युवा प्रतिभाओं से भेंट, विषय विशेषज्ञों के साक्षात्कार और रेडियो एंकर्स की रोचक लुभावनी प्रस्तुतियां। ट्यून करें मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। तो सुनना ना भूलिए आपका अपना कार्यक्रम युववाणी।
3: कवि श्री राग देलंग।
4: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफ़र जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत।

आशा भोसले की आवाज में अभी आपने सुना लोफर फिल्म का गीत शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म दो रास्ते से, आवाज लता मंगेशकर की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत एक बार फिर लक्ष्मीकांत।

0: लता मंगेशकर की आवाज में भी आपने सुना दो रास्ते फिल्म का गीत। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिर से संगीत
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरीके से बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनते ही सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन का गतिरोध एक हफ्ते में दूर कर लिया गया है।
1: G7 और G13 का लोकार्पण हुआ है। वॉट टावर से लेकर, कनेक्टिंग रोड से लेकर, पीने से पानी से लेकर मेडिकल सुविधाएं, रहने की व्यवस्थाएं और नई फेंसिंग इंट्रोड्यूस करना, हर दृष्टि से एक लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हमने कार्य योजना बनाई थी और 2 साल में हमारा एक वल्नरेबल दिखता हुआ क्षेत्र दुश्मन की बुरी नजर से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने 2 दिनी जम्मू कश्मीर के दौरे के अंतिम दिन आज श्रीनगर में हैं। वे यहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और लोक भवन श्रीनगर का दौरा भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के प्रबंधन का अध्ययन कर वे मध्य प्रदेश को धार्मिक पर्यटन का मॉडल स्टेट बनाएंगे। CM डॉक्टर यादव आज शाम को भोपाल वापस आ जाएंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। सेना प्रमुख पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। इस बार रक्षा अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। साथ ही मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी ये डिग्री प्रदान की गई है। छतरपुर में ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए जिला प्रधान न्यायाधीश रविन्द्र सिंह और कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश राजेश देवालिया आज साइकिल से अदालत पहुंचे। न्यायाधीश ने बताया कि अब प्रत्येक शनिवार सभी न्यायिक अधिकारी साइकिल से ही न्यायालय आएंगे ताकि आमजन को ईंधन बचत और स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित किया जा सके। ऐसा करना दरअसल पर्यावरण के लिए अनुकूल है और हम अपने देश हित के लिए भी काम कर सकेंगे। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 जारी कर दिया गया है। इसमें भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति के आंकड़े दर्शाए गए हैं। मंत्रालय ने यह सर्वेक्षण 2023-24 में संचालित किया था। और अब बात मौसम की करते हैं। मध्य प्रदेश में नौतपा के बीच मौसम का अनोखा रूप देखने को मिल रहा है। प्रदेश का आधा हिस्सा जहां भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, वहीं बाकी आधे हिस्से में तेज आंधी और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड और मंदसौर सहित प्रदेश के 9 जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 8 जिलों में लू की भी चेतावनी है। हाल ही में हुई बारिश के कारण प्रदेश के ग्वालियर और दतिया जैसे शहरों के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट आई है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। सीहोर जिले में स्कूल चले हम अभियान के तहत शिक्षा पुंज पॉइंट 2 नवाचार जारी है। कलेक्टर के निर्देश पर अक्षर साथी घर घर जाकर ड्रॉपआउट बच्चों को दोबारा शाला से जुड़ रहे हैं। आगरमालवा जिले में महावारी स्वच्छता दिवस पर ग्राम खेरिया और कानड़ स्वास्थ्य केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। किशोरियों को इस दौरान स्वच्छता, एनीमिया से बचाव और पौष्टिक आहार की जानकारी दी गई। भोपाल जनजातीय संग्रहालय में कल संभावना कार्यक्रम होगा। इसमें राजगढ़ का मालवी गायन, नर्मदापुरम का कबीर गायन और डिंडोरी का गुदुम बाजा नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। और रतलाम जिले में गुलाब चक्कर पर साहित्यिक संगम कविताई शब्दों की शान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें नए रचनाकारों ने देशभक्ति, मातृप्रेम और नारी शक्ति पर मंत्रमुग्ध करने वाली प्रस्तुति दी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुने 7:10 पर। इजाजत दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की

0: बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गयी। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। ये भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ओमी नाउलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए

0: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
1: आज डी के शिवकुमार राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मिले। स्वेरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIYANewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिंट नाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा

का नाम था खट्टा मीठा। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम थे ग्राम भैंसवाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय खिरुटकर। इसी गीत को पसंद किया था कोटवा नारायण।

0: और डागला परिवार की। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म चरस से। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। गीत को पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं कोटवा नारायणपुर बापावट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं गोरीनगर इंदौर से आनंदपुर कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले। गीत की एक पसंद मिली है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिन ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर की। तो इन सब की पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म चरस से। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: अच्छा गुड नाइट।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में चरस फिल्म का गीत, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म दादा से, और पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं बिहार कॉलोनी लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनोरी, प्रकाश वीर राजपूत डोंडी लोहारा बालोद से, कमलेश जयपुरिया टाउनशिप भिलाई से, अनुश्री प्रदीप पिंकी और प्रमिला प्रदीप जेल रोड रायगढ़ से, लालचंद मिश्रा और नरेंद्र कुमार राम गोलाबाजार बक्सर से, श्रद्धानंद आर्य अभयनंद आर्य परमानंद आर्य पंकज प्रमोद रोहित व मोहित, बेरडी से हुकुम करमरकर सुनीता करमरकर हार्दिक करमरकर प्राची करमरकर तनु करमरकर, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास मानिकपुर, दतरंगी से भागवत वर्मा। इन सब की पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है दादा से, आवाज यशोदास की है, शब्द रचना कुलवंत जानी की और संगीत उषा।

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में भी आपने सुना कुलवंत जानी का लिखा गीत। आवाज यशोदास की थी और फिल्म का नाम था दादा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुस्ताबा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। इस गीत की एक फरमाइश हमें मिली है प्रभाकर चौंधले और आरती चौंधले की, गौतम नगर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से। इसी गीत को पसंद किया है ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ज्योति, रियांश ठाकुर ने। भाटापारा ततरंगी से इसे पसंद कर रहे हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा। और सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सबने पसंद किया है फिल्म वो कौन थी का गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने, शब्द रचना राजा मेहंदी अली खान की है और संगीत मदन मोहन का है। तो आइए सुनते हैं आप सब

कार्यक्रम के अंत में सुनिए राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में इंदिवर का लिखा गीत, आवाज कुमार सानू और साधना सरगम की है और फिल्म का नाम है जुर्म। और पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का

कुमार सानू और साधना सरगम के गाए फिल्म जुर्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है इस घंटे

पेश है इस घंटे की खास खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरीके से बदला जा रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल एक दिवसीय दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे वहां कोट्टायम में मलयालम दैनिक दीपिका के 144वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। सेना प्रमुख पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 जारी कर दिया गया है। इसमें भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति के आंकड़े दर्शाए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने 2 दिनी जम्मू कश्मीर के दौरे के अंतिम दिन आज श्रीनगर में है। वे यहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और लोक भवन श्रीनगर का दौरा भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के प्रबंधन का अध्ययन कर वे मध्य प्रदेश को धार्मिक पर्यटन का मॉडल स्टेट बनाएंगे। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के बीच कई हिस्सों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर सहित प्रदेश के 9 जिलों में ओले गिरने और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेब पर सभा समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सांतकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। सांतकालीन सभा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं शाम 5:33 पर और रात 8:15 पर। शाम 6:00 प्रसारित करेंगे भारतीय प्रसारण के 90वें वर्ष पर आकाशवाणी की विकास यात्रा। इस विषय पर पूर्व कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी भोपाल एवं राज्य सूचना आयुक्त श्री राजेश भट्ट से शुभम तिवारी की बातचीत। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का कार्यक्रम प्रसारण समय है 7:45। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रात 8:00 सुनिए सुर्खियों में। 9:30 पर आप सुनेंगे युवा भारती और रात 10:00 संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिए स्मिता मोक्षी का ख्याल गायन। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय दोपहर के 3:02 हुए हैं। हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया है। इस दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदला जा रहा है। प्रदेश के अनूपपुर जिले में श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया है। ये दुर्घटना पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के बिजोरा गांव में हुई, जहां करीब 6 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 जारी कर दिया गया है। इसमें भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति के आंकड़े सामने आए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति NSC ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम IIT क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल नेपाल स्टील इंडिया कंपनी की निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो आज सेमीफाइनल में जापान की सायका होबारा और यऊची शिमोगामी से पराजित हो गए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

दोस्तों, लाइफ में इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में सुख दुख का आना जाना तो लगा ही रहता है। सुख का तो ठीक है, लेकिन दुख में आत्मनिर्भरता ही आपके काम आती है। और आत्मनिर्भरता सिर्फ पैसों से नहीं आती, ये आती है आपके टैलेंट से, आपके अपने कौशल से। आपका ये टैलेंट ही आपको हमेशा सही राह पर लेकर जाता है। कैसे, जानते हैं आज की युवाणी में। आकाशवाणी के रीवा केंद्र से मैं आपकी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। स्वीकारिए मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। दोस्तों, अभी मैंने आपसे आत्मनिर्भरता की बात की, ये क्या है और कैसे काम आती है, जानते हैं राहुल और प्रिया की बातों के जरिए। राहुल ने कहा, आजकल हर तरफ आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, लेकिन सच बताऊं, आत्मनिर्भर बनना इतना आसान नहीं है। पहले तो हमें कुछ अच्छा कौशल सीखना पड़ेगा ना। प्रिया ने कहा, बिल्कुल सही कहा। कौशल विकास मतलब बस डिग्री ले लेना नहीं है, मतलब वो हुनर सीखना जो काम आए, जिससे आप पैसे कमा सकें और दूसरों पर निर्भर ना रहें। जैसे आजकल लड़के लड़कियां सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं। राहुल ने कहा, हाँ, मेरे बगल वाले भैया ने तो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया था। पहले वो मजदूरी करते थे, अब खुद का छोटा सा काम शुरू कर दिया है। घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ खुद ही संभाल रहे हैं अब वो। ये है असली आत्मनिर्भरता। प्रिया ने कहा कि हाँ, सरकार भी बहुत सारी स्कीम्स चला रही है, पीएम कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ITI, पॉलिटेक्निक, मुद्रा लोन, स्टैंड अप इंडिया। लेकिन समस्या ये है कि बहुत से लोग सिर्फ नाम सुनकर रह जाते हैं, असल में जाना, ट्रेनिंग लेना और फिर लगना भी तो पड़ता है। राहुल ने कहा, कौशल सीखने के बहुत से फायदे हैं। नौकरी की तलाश में भटकना बंद हो जाता है, खुद का छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अच्छी कमाई होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और देश भी मजबूत होता है। प्रिया ने कहा, बिल्कुल, एक गांव की लड़की अगर अच्छे से हैंडीक्राफ्ट, टेलरिंग या ऑनलाइन काम सीख ले तो वो न सिर्फ खुद कमा पाएगी बल्कि दूसरी लड़कियों को भी ट्रेनिंग दे सकती है। एक परिवार आत्मनिर्भर बनेगा, फिर पूरा गांव। राहुल ने कहा, लेकिन चुनौतियां भी तो हैं। सही ट्रेनिंग सेंटर नहीं मिलता, लोग बीच में छोड़ देते हैं, लोगों का ये सोचना कि ये काम तो छोटा काम है और शुरुआत में पैसे भी कम मिलते हैं। प्रिया ने कहा, चुनौतियां तो हैं, लेकिन रुकना नहीं है। आज के समय में सोशल मीडिया, ऑनलाइन कोर्स, फ्री एप्स के जरिए भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बस लगन चाहिए। राहुल ने कहा, वाकई में कौशल विकास आत्मनिर्भरता की सीढ़ी है। जितना ज्यादा हुनर सीखोगे उतना कम दूसरों पर निर्भर रहोगे। चाहे नौकरी करो, अपना काम शुरू करो, आत्मनिर्भर इंसान कभी हार नहीं मानता। प्रिया ने कहा, और सबसे बड़ी बात ये कि आत्मनिर्भर व्यक्ति न सिर्फ खुद खुश रहता है बल्कि परिवार, समाज और देश को भी मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, राहुल और प्रिया की बातों के जरिए ये तो समझ में आता है कि किताबी ज्ञान अच्छा है, लेकिन हाथ का हुनर जीवन बदल देता है। तो आज से ही तय कर लीजिए कि आप एक नया कौशल सीखना शुरू कर देंगे। छोटा कदम हो सकता है, लेकिन ये कदम हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में ले जाएगा। कौशल सीखिए, आत्मनिर्भर बनिए और देश को मजबूत बनाइए। और दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं KK की खूबसूरत आवाज में ये गीत।

0: दोस्तों, आज के समय में हमारा युवा समाज नशे की लत का ज्यादा शिकार है। आज युवाओं के नशे का मुख्य कारण है उनमें सहन शक्ति की कमी। देश का युवा वर्ग आज नशे की गिरफ्त में फंसता जा रहा है। युवा आजकल बहुत जल्दी अपना हौसला खो देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर नशे की गिरफ्त में फंस जाते हैं। अपने जीवन में कई बार लोग लगातार मिल रही असफलताओं से घबरा जाते हैं और इस कारण वो भविष्य में मिलने वाली सफलताओं की संभावना को भी खो देते हैं, फिर किस्मत और समय को दोष देते हैं। नशे को किस तरह से छोड़ा जा सकता है, नशे की लत से किस तरह से बाहर आया जा सकता है, जानते हैं आस्था तोमर से।
1: दोस्तों, देश की युवा पीढ़ी अगर गलत रास्ते पर चले तो इसमें नुकसान केवल उन युवा पीढ़ी का ही नहीं होता, बल्कि इसमें देश का भी नुकसान होता है। युवा पीढ़ी के गलत राह पर चले

0: जाने से देश की तरक्की रुक जाती है, क्योंकि इन्हीं से तो देश की तरक्की है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी नशे के राह पर जा रही है। दोस्तों, एक व्यक्ति जब नशा करना शुरू कर देता है तो उसका घर, परिवार, सबके जीवन में अंधेरा छा जाता है। दुख तो इस बात का है कि यह सब जानने के बावजूद भी युवा पीढ़ी नशे का सेवन करना नहीं छोड़ रही। सारे देशों में भारत सबसे अत्यधिक युवा पीढ़ी वाला देश है। युवा पीढ़ी पर ही देश की तरक्की निर्भर करती है। लेकिन जब युवा पीढ़ी गलत राह पर चली जाए तो फिर देश की तरक्की कैसे हो सकती है? आज नशा इस कदर युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है जैसे एक दीमक लकड़ी को बर्बाद कर देती है। नशा नाश के समान होता है और आज भारत की युवा पीढ़ी बहुत तेजी से नशाखोरी की प्रवृत्ति अपना रही है। आजकल लड़कियां भी नशा करने लगी हैं। आजकल के युवाओं में नशा करने के बहुत सारे कारण मौजूद हैं, जैसे कि नशे को फैशन समझना, तनाव को कम करने का माध्यम बनाना, गलत संगत में फंसना, संस्कारों की कमी और नशीले पदार्थों का अत्यधिक प्रचार और प्रसार। यदि आज के युवा वर्ग को नशीले पदार्थों के सेवन से बचाना है, उन्हें नशे की राह पर जाने से रोकना है, तो नशीले पदार्थों की बिक्री पर कठोरता से रोक लगानी पड़ेगी। जब नशीले पदार्थ की बिक्री नहीं होगी तो लोग उसका सेवन ही नहीं करेंगे। आज सरकार और बहुत सारे ऐसे संस्थान जो युवा पीढ़ी को नशा मुक्त करवाने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ युवा पीढ़ी को भी यह समझने की जरूरत है कि वे पढ़े लिखे हैं, अच्छे बुरे की पहचान भली भांति कर सकते हैं। इसलिए नशीले पदार्थों को अपनी लत ना बनाएं। यह समझने का समय आ गया है कि स्कूल और कॉलेजों में पागलपन भरी प्रतिस्पर्धा युवाओं के भविष्य को सुधारने के बजाय बर्बाद कर रही है। प्रतिस्पर्धा का उच्च स्तर छात्रों को तनाव में डाल रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है। माता पिता का ध्यान अपने बच्चों को कक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते देखने पर ही नहीं होना चाहिए। इसके बजाय वह एक स्वस्थ और बुद्धिमान बच्चे की परवरिश करें जो सही और गलत के बीच का अंतर करने में सक्षम हो। माता पिता को अपने बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए और हर कदम पर उनके साथ रहना चाहिए। उन्हें अपने कौशल को निखारना चाहिए, लेकिन साथ ही उनकी क्षमता को भी समझना चाहिए। उन्हें पढ़ाई और ऐसी अन्य अपेक्षाओं का बोझ नहीं डालना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना चाहिए। माता पिता को यह समझने की जरूरत है कि अपने बच्चों को डांटना और उन्हें लत छोड़ने के लिए मजबूर करना मदद नहीं करता है। किसी भी तरह की लत से छुटकारा पाना एक क्रमिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान माता पिता को अपने बच्चों के साथ खड़े रहना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को नशे की लत से उबरने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन और सहायता देनी चाहिए। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। धन्यवाद।
1: दोस्तों, अभी आप आस्था तोमर को सुन पा रहे थे। दोस्तों, माता पिता हमारे साथ हर जगह नहीं होते, इसलिए वो हमें संस्कार देते हैं और उनके ये संस्कार ही हमें जीवन में हर गलत राह पर जाने से रोकते हैं, हमें सही काम करने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें एक सही रास्ता दिखाते हैं। नशा छोड़ने के लिए जरूरी है कि युवा अपने आप को मजबूत बनाए और गलत संगति से बचें। कोई भी परेशानी अपने माता पिता के साथ या अपने संग साथियों या कोई ऐसा रिश्तेदार जो हमें समझ सके और जो सही और गलत में फर्क बता सके, उनसे शेयर जरूर करें। जब भारत का युवा वर्ग नशे की लत से दूर रहेगा, तब तो वो अपने करियर के बारे में सोच पाएगा। और आज के समय में करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत से रास्ते हैं, तो उन रास्तों की तरफ देखिए और नशे से दूर रहिए। और दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं राहत फतेह अली खान की खूबसूरत आवाज में।

और अब बढ़ते हैं हमारे आज के विशेष स्तंभ हमारी धरोहर की ओर, जिसमें आज हम आपको बताएंगे पिथौरा भित्ति चित्र कला के विषय में। पिथौरा भित्ति चित्र कला क्या है? दोस्तों, पिथौरा भित्ति चित्रकला गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों की बहुत खूबसूरत और जीवंत कला है। ये मुख्य रूप से राठवा और भील समुदाय के लोग ही बनाते हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि पूजा पाठ और अपनी इच्छाओं को ईश्वर तक पहुंचाने का एक पारंपरिक तरीका है। पिथौरा चित्र दीवारों पर बनाए जाते हैं, आमतौर पर घर की मुख्य दीवार या पूजा वाले कमरे की दीवार पर ही बनाए जाते हैं। इनमें सबसे पहले सफेद, लाल, नीला, पीला, हरा और काला रंग इस्तेमाल होता है, जो कि प्राकृतिक चीजों से ही बनाए जाते हैं, जैसे चावल का आटा, हल्दी, फूल, पत्तियां, ये सभी। और आजकल बाजार के रंग भी इसमें उपयोग किए जाते हैं। लेकिन ये बनाया कैसे जाता है, ये जानते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले दीवार को गोबर और मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। फिर कलाकार, जिसे की लखेरा कहते हैं, वो बांस की पतली छड़ी या ब्रश से बिना किसी नक्शे के सीधे चित्र बनाते हैं। चित्रों में घोड़े, बैल, हाथी, मोर, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, देवी देवता और दैनिक जीवन के दृश्य दिखाए जाते हैं। बीच में एक बड़ा चौकोर या आयताकार बॉर्डर बना दिया जाता है, जिसमें मुख्य कहानी छुपी हुई होती है। चारों तरफ सुंदर बॉर्डर और छोटे छोटे प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं। दोस्तों, पिथौरा मुख्य रूप से शुभ अवसरों पर बनाया जाता है, जैसे शादी, किसी बच्चे का जन्म, घर बनना या कोई मनोकामना पूरी होने पर। लोग मानते हैं कि पिथौरा बनाने से घर में सुख समृद्धि आती है और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। ये आदिवासी संस्कृति का आईना है, जिसमें प्रकृति, पशु पक्षी और देवता सभी एक साथ रहते हैं। आजकल ये कला सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं रही, कलाकार इसे कैनवास, कपड़े और कागज पर भी बना रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं इसे बढ़ावा दे रही हैं, ताकि नई पीढ़ी इसे सीखे और कलाकारों की आय बढ़े। दोस्तों, पिथौरा कला हमें सिखाती है कि सादगी में भी कितनी सुंदरता छिपी हो सकती है। ये हमारी जड़ों, प्रकृति और आस्था का सुंदर मेल है। तो अगर आप कभी राठवा गांव जाएं, तो इन जीवंत दीवारों को देखना कभी मत भूलिएगा। ये चित्र सिर्फ दीवार नहीं सजाते, बल्कि हमारे दिल को भी छू जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे यूं ही टेंशन लेकर के जाया ना करें, क्योंकि आपको हर रोज आपका मूड डिस्टर्ब करने के हजारों बहाने मिलेंगे। लेकिन हर वक्त खुद को पॉजिटिव रखें

दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसे खुलकर जीना चाहिए। जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। इसी के साथ आपको सुनवाते हैं विशाल दादलानी की आवाज में।

दोस्तों, इस गीत के साथ वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का। तो जाने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा ईमेल एड्रेस है yuvvanireeva@gmail.com। तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और निरोगी काया का ध्येय लिए विदा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला को। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।

0: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर
1: जानकारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
3: RBI कहता है
0: जानकारी 45 मिनट पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी, आकाशवाणी शिवपुरी से।

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

अमृता काक और मीका सिंह की आवाज़ों में फिल्म रेडी का गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत के बोल लिखे आशीष पंडित ने और संगीत था देवश्री प्रसाद का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, आइए आपको अगला गीत हम सुनवाते हैं, फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन और अभय देओल की आवाज़ें हैं। जावेद अख्तर की शब्द रचना और संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

रोता था। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इंसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है। जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है। एवरग्रीन भी है, कहानी नेवर बीन टोल्ड। जेन जी भी है, है ऑल्सो जेन ओल्ड, नई पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ।

0: Download Waves OTT app now and watch for free.
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि हमारे युवा देश की आशा और सामर्थ्य हैं। उनके विचार और चरित्र ही देश का भविष्य तय करेंगे। जरूरी है कि हमारे युवा जो भी काम करें उसमें उत्कृष्टता और संवेदना पर विशेष बल दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरीके से बदला जा रहा है। IPL क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के बीच मौसम ने राहत भरा रुख अपना लिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग ने ग्वालियर सहित प्रदेश के 9 जिलों में ओले गिरने और बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: अप्रस्तुत है भारतीय प्रसारण के 90 वर्ष पर आकाशवाणी से जुड़े संस्मरणों पर पूर्व कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी भोपाल एवं राज्य सूचना आयुक्त राजेश भट्ट से शुभम तिवारी की बातचीत।
1: साथियों नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा आपको जानकारी है कि भारतीय प्रसारण का ये 90वां वर्ष चल रहा है और अब से कुछ ही दिनों बाद यानी 8 जून 2026 को हम भारतीय प्रसारण के ये 9 दशक पूरे करने वाले हैं और इसी क्रम में हमने कोशिश की है कि हम आकाशवाणी के संस्मरणों को, इसकी यात्रा को, इसके विकास क्रम को जानें और समझें और इसलिए आज हमने एक बड़ी चिरपरिचित आवाज़ को अपने स्टूडियोज़ में आमंत्रित किया है। उनका नाम बताए बिना, उनका परिचय दिए बिना केवल उनकी आवाज़ से आप उनको जान जाएंगे। हमने अपने स्टूडियोज़ में आमंत्रित किया है राज्य सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश शासन श्री राजेश भट्ट जी को। भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद और आज एक नए रूप में हमारे तमाम श्रोताओं के बीच आकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है और आपके साथ भी।
1: सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जब राज्य सूचना आयुक्त का कार्यभार आप संभाल रहे हैं तो क्या वहाँ जाकर आकाशवाणी को भूल तो नहीं गए?
2: देखिए, कार्यभार किसी भी पद का हो या ना भी हो तो भी आकाशवाणी को भूलना तो अब इस जन्म में संभव नहीं है। आकाशवाणी इतना रग रग में बस गया है, एक बहुत लंबा समय, लगभग 32 वर्ष से ज़्यादा का समय आकाशवाणी में बिताया। पूरा जिसको कहना चाहिए एक लाइफ का एक इतना बड़ा अहम हिस्सा इसके स्टूडियोज़ में गुजरा है तो ये तो भूलना बिल्कुल असंभव है।
1: अब देखिए, हम 90 वर्षों पर बात कर रहे हैं और कितने अच्छे नोट से आपने इस बातचीत की शुरुआत की है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सर कि जब आप आकाशवाणी शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है?
2: देखिए, मैं सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। एक समय वो था जब आकाशवाणी मेरे लिए सिर्फ एक नौकरी करने की जगह हुआ करती थी। 1993 में जब मैं आकाशवाणी में पहली बार आया तो उस समय एक युवा के रूप में सिर्फ चूँकि एक अच्छी नौकरी लगी है ये एक दृश्य सामने था। लेकिन जिस तरह से आकाशवाणी के साथ फिर जब मैं जुड़ा, यहाँ की कार्यप्रणाली, यहाँ के चैलेंजेस, यहाँ के अपॉर्चुनिटीज़, इन सब को अपने पूरे 32 साल के कार्यकाल में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए जब देखा, सुना, समझा तो एक चीज़ में सबसे बड़ा डिफरेंस महसूस हुआ, वो ये था कि यहाँ दिमाग से ज़्यादा दिल से काम किया जाता है।
1: वाह।
2: और यही इस संस्था का एक, जिसको कहना चाहिए, जिसकी आत्मा है,
1: USP।
2: ऑफिसेज बहुत सारे होते हैं, कई तरह के ऑफिस है जहाँ पे काम करना ही होता है और हमें उसकी तनख्वाह मिलती है, ये एक रूटीन वर्क है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दिमाग से काम नहीं करना होता है, दिल से भी काम करना होता है। 24 घंटे एक तरह से हमारा दिमाग अपने इस केंद्र के लिए
1: चलाए,
2: कुछ कार्यक्रमों के लिए चलता रहता है। तो अब ये कहना कि ये एक नौकरी का स्थान है, अब धीरे धीरे थोड़े थोड़े बाद में नौकरी एक गौण होती चली गई और ये एक मिशन, एक कार्य के रूप में सामने आने लगा। तो जब इस तरह से कोई संस्थान के साथ जुड़ जाते हैं
1: जी,
2: तो अब इसका तो जवाब सिंपल सा ये है कि वो फिर इतना घुल मिल जाता है कि आकाशवाणी का शब्द सुनते से ऐसा लगता है कि ये मेरा अपना मायका है, मेरा अपना घर है, ये मेरा अपना आंगन है जिसमें हम खेले कूदे बड़े हुए। यानी इतना हमारा व्यक्तित्व आकाशवाणी के साथ इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है। तो जिस तरह से हमें अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से मिलने पर खुशी होती है, उनके बारे में सुनने पर खुशी होती है, वैसी ही खुशी आकाशवाणी के बारे में उसका नाम मात्र सुन लेने से, उसकी ट्यून मात्र को सुन लेने से महसूस होती है
1: जी। यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि आकाशवाणी ने पिछले 9 दशकों में समाज के विभिन्न वर्गों में एक बौद्धिक समृद्धि दी है, उनके जीवन को एक बदलाव दिया है और उसे लगातार लाने की सकारात्मक दिशा में कोशिश की है। उस प्रकार के बदलाव आप किस तरह से देखते हैं और किस प्रकार के बदलाव आपने महसूस किए हैं कि लोगों के जीवन में वो आ पाए?
2: बिल्कुल, मैंने अपने पूरे आकाशवाणी के पूरे कार्यकाल के दौरान इस चीज़ को बहुत महसूस किया। और शायद जो मैं बात शुरुआत जो भी की थी ना, दिल से जुड़ा होने का कारण यही होता है कि जब हम कोई काम करते हैं और हमें उसका परिणाम जब नज़र आता है तो काम करने का उत्साह और बढ़ जाता है
1: जी।
2: हम कार्यक्रम बनाते थे उन लोगों के लिए, उन श्रोताओं के लिए, उन दूर दराज में लोगों रहने वालों के लिए जिनके पास जानकारी का अभाव होता था, सही जानकारी का अभाव होता था, समय पर दी गई जानकारी का अभाव होता था। ऐसे में हमारा कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो एक अच्छी जानकारी दे रहा है, साथ ही साथ अच्छा मनोरंजन दे रहा है। और उसके बाद जब हम उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव देखते हैं
1: जी,
2: और जब हम ये पाते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में आने वाले बदलाव के पीछे हमारा कहीं ना कहीं योगदान रहा है, तो वो जो खुशी मिलती है वो ज़बरदस्त होती है। और ये हमने लगातार किया, बल्कि ये हमारा काम ही था। एक लोक प्रसारक के रूप में ऐसे तमाम विषयों को हम उठाते थे जिसकी आवश्यकता आजकल लोगों को है
1: जी।
2: हो सकता है कि इस दौड़ में हम कई बार कई अन्य केंद्रों की साथ यदि तुलना करें तो हम कहीं पिछड़े हुए नजर आएं, क्योंकि हमें वैसा आकर्षक नहीं है या वैसे हम खिलंदड़ापन नहीं है, वैसा खुलापन नहीं है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत कम और हमें लोगों को जानकारी देने की, सही जानकारी गंभीरता के साथ और सटीक जानकारी समय पर जानकारी देने की आवश्यकता ज़्यादा नज़र आती है। तो ये जो पूरा जीवन में लोक जीवन में परिवर्तन जब हम आकाशवाणी के माइक से देखते हैं
1: जी,
2: जब हम लोगों से बातचीत करते हैं फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, या जब हम फील्ड में जाते थे लोगों से जब बात होती थी और हमें पता चलता था कि हमारे किसी एक पर्टिकुलर कार्यक्रम की वजह से उन्हें ये जानकारी मिली और उस जानकारी मिलने की वजह से उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, तो ये हमने लगातार देखा है कई सारे एग्जाम्पल्स है इसके, तो ये हमें उत्साहित भी करते हैं। एक उदाहरण बताऊं तो मैं मनोरंजन की जब बात आई थी, तो जब हम मनोरंजन करते हैं हमारा हर गाना कई बार बड़ी अच्छी जानकारियों के साथ में भी लिपटा हुआ होता है। सुनने में हो सकता है कि वो छोटी सी जानकारी हो, लेकिन हम किसी अच्छे से गीत के पहले कही गई दो पंक्तियाँ, हमारे अनाउंसर द्वारा कही गई दो पंक्तियाँ किसी के जीवन में बदलाव ला सकती है क्या? बिल्कुल ला सकती है। कई बार हमारे किसी गाने के पहले की कही गई सकारात्मक बात को सुन करके कई लोगों ने अपने उस समय आने वाले आत्महत्या के विचार को भी टाल दिया।
1: क्या बात!
2: तो जब वो हमें ये अपना अनुभव शेयर करते हैं कि हम उस क्षण में थे, हम विचार कर रहे थे कि हम आत्महत्या कैसे करें और कर नहीं जा रहे थे, उसी समय हमें गाने के पहले की कही गई ये दो बात सुनाई दी और हमने थोड़ी देर के लिए हमने अपना मन भटका और वो थोड़ा
1: आवेग चला गया
2: और आवेग चला गया और वो आज हमारे साथ है और समाज को एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल देखने को मिले, तो ये तो अनुभव बहुत सारे हैं इस तरह के।
1: समाज के विभिन्न वर्गों की बात चल रही थी, तो जैसा कि हम जानते हैं कि आपने आकाशवाणी जगदलपुर में भी अपनी सेवाएं दी थी और ऑफ द माइक आपने हमें कई किस्से उसके बताए हैं, तो इस संदर्भ में क्या कोई किस्सा आकाशवाणी जगदलपुर से संबंधित कोई आपको याद आता है?
2: बहुत सारे अनुभव हैं वहाँ पर।

0: जगदलपुर की आपने बात निकली कही है यहाँ पे, तो निश्चित तौर पे जगदलपुर का जब नाम आता है, बस्तर का नाम आता है, तो नक्सलवाद का भी वहाँ पर नाम आता ही है। जगदलपुर शहर में तो उसका प्रभाव ना के बराबर ही था, गांवों में जहाँ मंदिर जब जाते हैं तो वहाँ इसका प्रभाव देखने को मिलता था। लेकिन मैं एक चीज़ को ज़रूर कहना चाहूँगा कि चाहे किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, वो नक्सलवादी हो या ना हो, सामान्य इंसान हो, कैसा भी इंसान हो, रेडियो के साथ उसका रिश्ता, दिली रिश्ता मैंने वहाँ पाया
1: जी।
0: अनुभव की बात बताऊँ तो एक बार हम लोग शाम के समय किसी ऐसी जगह पर थे जहाँ दूरस्थ थे और हम चाय पीने के लिए रुके, और हमें थोड़ा सा कहीं ऐसा महसूस हुआ कि शायद कुछ ऐसे लोग वहाँ पर हैं जो हमें वहाँ पर शायद देखना पसंद नहीं कर रहे
1: जी।
0: तो हम लोग थोड़ा सा सहमे भी थे। इस बीच में बातचीत हुई वहाँ के लोगों से, उन लोगों ने ही थोड़ा सा छेड़ी, वो जानना चाहते कि हम कहाँ से, और जैसे ही उन्हें पता चला कि हम रेडियो से हैं तो उन सब की जो बॉडी लैंग्वेज वो एकदम बदल गई, और उन्होंने बड़ी आवभगत करी और चाय पान कराया हमको वहाँ पे अपनी तरफ से कि नहीं नहीं साहब, हम तो आपको तो हम सुनते रहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे बीच हैं। और उन्होंने फिर हमें सलाह दी कि अब आप जो है इस रास्ते से जाइए और अब आप जल्दी जगदलपुर पहुंच जाइए बस। अब उन्हें कारण ना हमने पूछा ना उन्होंने बताया, हम खुद समझ सकते थे। तो इस तरह से जब हमको लगा कि हाँ, एक ऐसे संस्थान में हम काम कर रहे हैं जिसके प्रति जो भी उनके दिमाग में जो भी हो, उनकी अपनी विचारधारा जो भी हो, लेकिन रेडियो के प्रति जो उनका सम्मान, उनका आदर, उनका प्यार, वो हमें महसूस हुआ।
1: और जैसा हमने देखा कि हाल ही में मध्य प्रदेश जो है वो नक्सल मुक्त क्षेत्र हो गया, और इसमें हम कह सकते हैं, आप पुष्टि कीजिएगा इस बात की कि क्या आकाशवाणी ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है?
0: बिल्कुल, मैं इस चीज़ को पूरे पुरजोर ताकत के साथ ये बात कहूँगा, क्योंकि ये जो प्यार है, ये प्यार ही तो है जो कहीं ना कहीं हमारी बातों को मानने के लिए, या ना भी सीधे माने तो उनके मन परिवर्तन को करने के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्योंकि वो हमारे गाने को सुनते, हमारे लोकगीतों को सुनते थे, हमारी बातों को सुनते थे। हो सकता है कि ऊपरी तौर पर नजर आए कि वो हमारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिसको बोलते हैं बिहेवियरल चेंज लाना है, मन के अंदर जो परिवर्तन लाना है, वो कहीं तो जुड़ाव महसूस करते थे ना। तो लोगों के जो मन परिवर्तन की जब बात आती है तो रेडियो का वहाँ पर ना मान करके भी आप इसको चीज़ को मानेंगे कि बहुत बड़ा रोल उनके अपने जीवन में ये रहा, क्योंकि वो परिवार के साथ इस बात को मानते थे कि रेडियो जो कहता है वो सच कहता है
1: जी।
0: तो इस बात ने भी निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में ये काम किया और निश्चित तौर पे ये छत्तीसगढ़ में भी ये काम हो रहा है।
1: तो हम ये कह सकते हैं कि रेडियो जो है वो ग्रामीण भारत की सबसे विश्वसनीय आवाज़ रही
0: बिल्कुल,
1: और आगे भी रहेगी
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: यहाँ अब अगला प्रश्न ये उठता है कि नौवा दशक लगभग पूर्ण होने वाला आकाशवाणी का, भारतीय प्रसारण का, और अक्टूबर में आकाशवाणी भोपाल का भी सातवा दशक पूर्ण होने वाला है। आपने सबसे लंबे समय तक अगर कहीं सेवाएं दी हैं आकाशवाणी में तो वो आकाशवाणी भोपाल में दी हैं। हम चाहेंगे कि आप यहाँ की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं उन्हें रेखांकित करें।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी भोपाल का नाम तो बहुत सम्मान से लिया जाता है पूरे रेडियो जगत में, क्योंकि आकाशवाणी भोपाल ने अनेक ऐसे कार्यक्रम किए हैं, अनेक ऐसे उपक्रम किए हैं जिन्हें स्वीकार किया गया है। मैं याद करना चाहूँगा श्री रामचरित मानस गान की, जो आज पूरे भारत के सब केंद्रों में निरंतर जारी है। निरंतर इसलिए क्योंकि जिस दिन खत्म होता है, आखिरी एपिसोड में जब आरती होती है, उसके अगले ही दिन फिर से पहला एपिसोड शुरू हो जाता है, और ये क्रम सालों से चल रहा है। इसके पीछे यदि कोई सोच है तो वो आकाशवाणी भोपाल की ही सोच रही है। 72 के आसपास की बात होगी जब समर बहादुर सिंह जी यहाँ पर स्टेशन डायरेक्टर हुआ करते थे, पहला विचार उनके दिमाग में आया कि इस तरह का कोई श्री रामचरित मानस गान के साथ में कोई प्रयोग किया जाए। उस समय स्टाफ आर्टिस्ट बहुत थे, सरवत हुसैन जी थे, रामकृष्ण चंद्रश्री जी थे, ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पर, इंद्र कुमार बासु जी, तो ये सब लोगों को उन्होंने एकत्रित किया और कहा कि हम क्यों ना मानस गान शुरू करें। तब आकाशवाणी भोपाल में पहली बार ये मानस गान शुरू हुआ और पूरा आवर्तन हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया इसको, और ये पूरे देश में उस वक्त पहला ही होता था क्योंकि इस तरह का कोई विचार था नहीं। अब जब समाप्त हुआ, इसके बाद लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाना शुरू करी कि ये बंद क्यों कर दिया गया, और ये आवाज़ केवल भोपाल तक नहीं रही सीमित, ये संसद में भी, तत्कालीन संसद में भी ये उठी, और तत्कालीन जो भी माननीय सूचना प्रसारण मंत्री था उन तक बात पहुंची, और उन्होंने ये निर्देश जारी किया कि जो भी आकाशवाणी भोपाल में ये मानस गान चल रहा था, इसे बंद न किया जाए, चालू किया जाए।
1: यानी बीज यहाँ बोया गया,
0: बिल्कुल
1: वृक्ष जो है पूरे भारत में लगा।
0: बिल्कुल, और रातों रात फिर से तैयारी करके उसको पुनः उसका प्रसारण आरंभ किया गया, और वहीं से फिर ये आइडिया दिल्ली में भी चला, और वहाँ से फिर मुंबई को ये निर्देशित किया गया कि वो वहाँ के और भी बड़े जो संगीत कलाकार हैं, लता मंगेशकर जी, सुरेश वाडेकर, अनूप जलोटा, इन सब के आवाज़ों में फिर जो है ये रिकॉर्ड हुआ, जो पूरे भारत में आज लगातार जा रही है। तो उसका जो है जिसका जैसा आपने कहा कि बीज इसी आकाशवाणी भोपाल में बोया गया था। एक और सीरीज को मैं याद करना चाहूँगा जिसमें मानव के इतिहास को लेकर के एक लंबा सीरियल यहाँ यहीं पर निर्मित हुआ। पहले उर्दू में हुआ वो, और वो बाद में हिंदी में राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रसारण किया गया। तो वो उर्दू की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, शाकिर हुसैन जी यहाँ पर अनाउंसर हुआ करते थे, सीनियर अनाउंसर, और उन्होंने किया, और भी काफ़ी सारे लोग इसमें पूरे टीम में शामिल थे जिन्होंने ये मानव का इतिहास करके एक पूरा सीरीज किया
1: जी।
0: इसके अलावा हमने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम किए जिनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली, अवार्ड्स मिले। राही मतवाले एक प्रोग्राम है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, 1997 की बात है जब नया नया मोबाइल आया था, तो मोबाइल को रेडियो के साथ प्रयोग करने का श्रेय आकाशवाणी भोपाल को ही जाता है। उस वक्त हम भी जाते उसी नोकिया कंपनी के जो बड़े वाले सेल फोन हुआ करते थे जिसमें एंटीना होता था, वो लेकर के हम रात के 11:10 से लेकर 12:10 तक सड़कों पे जाते थे, और ट्रक ड्राइवर से बात करके और उनको HIV एड्स के लिए जागरूक करना, उनकी पसंद के गानों को सुनवाना, ये रात को एक प्रोग्राम करते थे राही मतवाले, जिसको बाद में अवार्ड मिला। उसी समय में बात पते की भी एक प्रोग्राम शुरू किया गया जो HIV एड्स के ही प्रचार प्रसार के लिए था। उसका जो सजीव फोनी प्रोग्राम था वो 15 साल तक मैंने ही लगातार किया था, वो
1: आपका नाम तो बहुत प्रचलित रहा
0: जी, उसी प्रोग्राम के साथ जुड़ गया था। तो वो उसमें हम लोग सजीव फोनी के माध्यम से HIV एड्स की जानकारी लोगों तक, और वो ही एक प्रोग्राम ऐसा था जिसकी वजह से एकदम से लोगों के बीच में जागरूकता
1: बहुत
0: बढ़ी थी। तो वो भी एक प्रोग्राम मैं ज़रूर याद करना चाहूँगा। तो इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम और भी हैं जो समय समय पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किए गए, जो यहाँ निर्मित किए गए
1: जी। और हम अगर आकाशवाणी भोपाल का अगर गुणगान करने लगे तो शायद ये साक्षात्कार कम
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: आगे बढ़ते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि आज सोशल मीडिया का दौर है, तो जो आकाशवाणी के प्रसारक हैं और आकाशवाणी के कार्यक्रमों के जो निर्माता हैं, उन्हें आप गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आज के युग को ध्यान में रखते हुए क्या सुझाव देना चाहेंगे, खासकर तब जब हमें अपने एक लोक सेवा प्रसारक की भूमिका भी निभानी है और साथ ही बाज़ार में भी रहना है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने यहाँ पर प्रश्न लिया है। सोशल मीडिया, यदि हम टेक्निकल रूप से देखें तो वो मीडिया तो एक अलग मीडिया है, जिस तरह से रेडियो एक मीडिया है, टेलीविज़न एक मीडिया है, प्रिंट एक मीडिया है, ऐसा एक सोशल मीडिया है। लेकिन उसके बढ़ते प्रभाव की वजह से यदि हम देखें सिनेरियो, तो जितने भी प्रिंट मीडिया है, जितने भी रेडियो के मीडिया हैं या दूरदर्शन के मीडिया, ये सब के सब सोशल मीडिया को एक सपोर्टिव मीडिया के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में आकाशवाणी क्यों पीछे रहे
1: जी?
0: तो आकाशवाणी भी उसके तमाम जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनका उपयोग करते हुए लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, अपने संदेशों को द्विगुणित करने के लिए उसका उपयोग कर रहा है। ये अलग बात है कि हम उससे उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। हम जो टेरिस्ट्रियल जो हमारा ब्रॉडकास्ट है, या हम सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम वैश्विक स्वरूप पा रहे हैं, उसको उससे हम हमारे टेरिस्ट्रियल मीडिया को नहीं रिप्लेस कर सकते और करना चाहिए भी नहीं, क्योंकि सब मीडिया का अपना अपना प्रभाव है। डिजास्टर के टाइम यदि हम बात करें
1: जी,
0: तो उस समय रेडियो ही एकमात्र ऐसा मीडिया रह जाता है जो उपयोगी रह जाता है।
1: आज भी
0: क्योंकि सोशल मीडिया खत्म हो जाएगा आज जैसे ही नेटवर्क खत्म कर दीजिए आप लोगों को, यदि किसी वजह से किसी डिजास्टर की वजह से यदि नेटवर्क नहीं है तो फिर सोशल मीडिया खत्म हो गया।
1: चेन्नई में देखा हमने, जम्मू कश्मीर में देखा,
0: सब जगह बाढ़ आई, जैसे ही लाइटें बंद हो गई, लोगों के मोबाइल्स बंद हो गए, नेटवर्क बंद हो गया, तो आप सोच लीजिए कि वो सोशल मीडिया का स्वरूप। उस समय सिर्फ रेडियो ही एकमात्र ऐसा है जिससे हम तरंग पहुंचा करके लोगों को डिजास्टर के टाइम पे मदद कर सकते हैं, इसलिए उसको रिप्लेस करना तो उचित नहीं है।
1: NDRF की गाइडलाइन में भी होता है कि सबसे पहले आप रेडियो उठाकर,
0: बिल्कुल रेडियो NDRF की गाइडलाइन में है, और पाया जाता है कि वही अंत में जो है उपयोगी वही साबित होता है, चाहे वो चक्रवात के टाइम हो, चाहे भूकंप का समय हो, चाहे वो बाढ़ का समय हो, या कोई भी और नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पे, तो उसका रिप्लेस नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया का उपयोग हम अपने कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छे से कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं
1: जी। एक और प्रश्न उठता है जब सोशल मीडिया की बात चल रही है कि युवा पीढ़ी को हम आकाशवाणी से और ज़्यादा जोड़ें, तो उसके लिए आकाशवाणी और यहाँ के प्रसारक क्या करें?
0: देखिए, युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए मैं अभी की भी बात करूँ तो अभी हम लोग ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं जो फील्ड में जाकर किए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये ज़रूर उस वक्त महसूस की गई थी और वाकई में इसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिला जब हमारी युवाणी की टीम कॉलेजेस में जाकर के विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। तो ये जबकि आकाशवाणी का काम नहीं था, लेकिन ये परिवर्तन समय की आवश्यकता को देखते हुए लाया गया कि किस तरह से युवाओं को जोड़ा जाए। युवाओं के साथ में जब वन टू वन जब इंटरेक्शन होता है या उनको कोई अपॉर्चुनिटी के रूप में जब रेडियो नजर आता है तो वो ज़्यादा प्रभावित होता है। तो एक दिन का आरजे की जो प्रतियोगिता शुरू की गई उसने बहुत प्रभावित करा, उसने लोगों को रेडियो को पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ा मदद करी। तो इस तरह के या जो हाल ही में भी जैसे वॉकेथन किया गया, ये भी एक बहुत अच्छा एक उपक्रम था जिससे लोगों को रेडियो के प्रति जागरूक किया गया। उसमें युवा वर्ग सबसे जुड़ाव ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता है क्योंकि युवाओं को जोड़ने का तात्पर्य सिर्फ नई फिल्मी गाना सुना देना या उसकी पसंद का गाना सुना देना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसको वहाँ तक लेकर के भी आना होगा।
1: बिल्कुल।
0: ताकि वो उस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि कई युवाओं को हो सकता है हमारे रेडियो चैनल के बारे में नहीं पता है, तो उसको पहले वो जानकारी भी देना है। तो उसके लिए युवाओं के बीच जा करके या स्टूडियोज में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आमंत्रित करके जिनसे वन टू वन इंटरेक्शन जब होता है तो लोगों को हम युवाओं की आवश्यकता बन पाए।
1: जी।
0: तो ये जिस दिन हो गया उस दिन समझ लीजिए कि हम युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम कर पा रहे हैं।
1: हम देखते हैं कि ये जो कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर रहे हैं इस समय, इसका एक उद्देश्य ये भी है कि आकाशवाणी की महिमा को लोग समझें और आकाशवाणी से और भी जुड़ें, युवा भी जुड़ें, हर वर्ग के लोग जुड़ें, और इसलिए भी जुड़ें क्योंकि आकाशवाणी ने बहुत भूमिका निभाई है लोगों के व्यक्तित्व निर्माण में। तो हम चाहेंगे कि आप अपने उदाहरण से ये बताएं लोगों को कि आकाशवाणी व्यक्तित्व निर्माण में किस प्रकार की भूमिका निभाता है।
0: बहुत अच्छा सवाल है और ये वाकई में हमारे तमाम युवाओं को भी जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। क्योंकि मैं पुनः वापस 93 के उस युग में जाना चाहता हूँ जब मैंने रेडियो में एक नौकरी के रूप या नौकरी करने के ही उद्देश्य के साथ प्रवेश लिया था। एकदम युवा और बहुत ज़्यादा अभी कामकाज को ना समझने वाले इंसान के रूप में जब मैंने प्रवेश किया, तब से लेकर के यदि मैं 32 सालों के ऊपर यदि निगाह डालता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मुझे एक मैच्योर इंसान बनाने में, समाज के प्रति जागरूक इंसान बनाने के लिए और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का एक मादा यदि अंदर पैदा किया है तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ रेडियो को जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें, हमारे संचार की बात करें, हमारे व्यक्तित्व की बात करें, किस तरह से हम आकर्षक हो सकते हैं, किस तरह से हम लोगों से प्रभावशाली तरीके से बात कर सकते हैं, मिलना जुलना कर सकते हैं और समाज के विभिन्न ऐसे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के क्रीमी लेयर होते हैं, जो सबसे ज़्यादा उपलब्धि पाने वाले, चाहे वो खेल की बात हो, चाहे वो साइंस की बात हो, चाहे वो पत्रकारिता की बात हो, कवियों की बात हो, गायक गायिकाओं की, वादकों की बात हो, सब क्रीम लोग यहाँ जहाँ मिलते हैं। तो उनके साथ उठने बैठने, उनके साथ बातचीत करना, उनको समझना और उनके ज़रिए समाज को देखने का एक बहुत बड़ा नज़रिया पैदा होता है। तो वो आपके व्यक्तित्व में जिस तरह का निखार लाता है वो मैं महसूस करता हूँ और शायद मैं आज जहाँ हूँ उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा हाथ रेडियो का ही रहा है, क्योंकि रेडियो ने वो मेरे जीवन में परिवर्तन किए, मेरी सोच में, मेरे व्यक्तित्व में, जिसने कि आज मुझे इतना बड़ा काम हाथ में लेने के लिए और मुझे देने का अवसर जो मुझे प्राप्त हुआ है उसके लिए मुझे तैयार किया
1: जी।
0: तो ये एक बहुत बड़ा और एक बहुत बड़ा एहसास मन में होता है कि हम रेडियो में यदि गाना भी बजा रहे हैं तो हम किसी के भले के लिए बजा रहे हैं। प्रोग्राम तो छोड़ ही दीजिए, प्रोग्राम में तो सीधी सीधी जानकारी है, पर वो जो गाना जो बजा रहे होते हैं वो गाना बजाना भी समाज सेवा है, ये एक भाव जब अंदर आ जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो एक एक क्षण रेडियो में बिताया, एक एक क्षण जो है वो ऋणी हो जाता है या वो व्यक्ति ऋणी हो जाता है जो रेडियो में काम करता है।
1: यानी हम मनोरंजन भी कर रहे हैं तो स्वस्थ मनोरंजन कर रहे
0: हैं। बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। एक प्रश्न यहाँ उठता है कि आप एक संवैधानिक पद में हैं और बहुत अल्प अभी आपका समय हुआ है उस पद में काम करते हुए, लेकिन यहाँ पर जो आपके अनुभव थे काम करने के, उसने किस प्रकार से इतने अल्प समय में वहाँ आपकी मदद की?
0: जी, बहुत अच्छा सवाल है और वाकई में बहुत सहायता की है, मैं ज़रूर मानना चाहूँगा। सबसे पहले जो मैं बात करूँ तो संचार कौशल जो हो जाता, संवाद कौशल जो विकसित हुआ है आकाशवाणी में रह करके, उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है क्योंकि इस पद पे आकर के हमें ऐसे बहुत सारे काम करने होते हैं, जहां में हमें अपने निर्णय की क्षमता को भी देखना होता है, साथ ही साथ अपने निर्णय के प्रति या लोगों को जागरूक करने के लिए संवाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो हम बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं। और जो एक बात मैंने और भी करी कि एक समाज के प्रति कुछ करने का यदि मन में भाव आ जाता है तो इस पद पर बैठ करके वो भाव भी सामने हमेशा बना रहता है कि आज हम

0: यदि अब जैसे सूचना के अधिकार अधिनियम की बात कर रहे हैं तो उसकी कितनी रक्षा कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ हम शासकीय कार्यालयों के लिमिटेशंस को भी समझ पा रहे हैं, तो उसका इस तरह से कोई रास्ता निकाला जाए जिससे वो अधिकार भी सुरक्षित रहे, लोगों को अपने पूरे अधिकार का उपयोग करने का अवसर भी मिले, और साथ ही साथ जो उसकी जो मूल भावना है सूचना के अधिकार अधिनियम की, वो जीवित रहते हुए इस समाज में कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने का एक प्रयास कर सके। तो ये बहुत बड़ा जो इसको कहना चाहिए मदद मिलती है आकाशवाणी से, जो कुछ सीखा उसकी वजह से वहाँ पर काम करने में आनंद भी आता है।
1: निश्चित तौर पर राजेश भट्ट जी, अगर हम आपके अनुभवों से सराबोर होने का ठान लें तो समय बहुत कम पड़ जाएगा, इतना डायनेमिक आपकी पर्सनालिटी है और इतने सारे अनुभव आपके विविध क्षेत्रों के हैं आकाशवाणी के अंदर ही, लेकिन समय अब हमें इजाज़त दे रहा है कि हम ये बात यहीं पर संपन्न करें और कभी और के लिए इन बातों को इसी छोर पर छोड़ दें।
0: बिल्कुल, आप जरूर इस बातचीत को यहाँ छोड़ रहे हैं, लेकिन रेडियो को छोड़ना मेरे लिए असंभव है, इसलिए रेडियो मेरे अंदर जीवित है और मैं रेडियो के साथ हमेशा रहूंगा, ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा चाहे मैं किसी भी पद पर रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी, बहुत अच्छे सार्थक बातचीत के लिए
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारतीय प्रसारण के 90 वर्ष पर आकाशवाणी से जुड़े संस्मरणों पर पूर्व कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी भोपाल एवं राज्य सूचना आयुक्त राजेश भट्ट से शुभम तिवारी की बातचीत। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारा अगला प्रसारण कुछ ही देर में होगा।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहला गीत हम सुनते हैं फिल्म लव आजकल से। नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की आवाज़ें हैं, इरशाद कामिल के लिखे बोल और

श्रोताओं, फिल्म जब वी मेट का गीत अभी आप सुन रहे थे, मीका सिंह की आवाज़ में, इरशाद कामिल के बोल और प्रीतम का संगीत। आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म बचना ए हसीनों से। सुखविंदर सिंह, शेखर रवजियानी और हिमानी कपूर के स्वर हैं, अन्विता दत्त गुप्ता के लिखे बोल और विशाल

फिल्म जाने दो या जाने ना का गीत अभी आप सुन रहे थे। राशिद अली के स्वर, अब्बास टायर वाला के लिखे बोल और एआर रहमान का संगीत। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से। जयदीप सहानी की शब्द रचना, सलीम सुलेमान का संगीत और सुखविंदर सिंह के।

0: प्रसून जोशी का लिखा यह गीत आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज़ में। फिल्म का नाम था दिल्ली सिक्स और संगीत था A.R. रहमान का। श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
2: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हां, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में।

अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में डीके शिवकुमार को नया नेता चुना गया है। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ. जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। विधायकों ने उन्हें अपना नेता और अगला मुख्यमंत्री चुना है। श्री शिवकुमार को नेता चुने जाने के प्रस्ताव को पारित करने के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक में पार्टी विधायकों को आधिकारिक रूप से इसकी सूचना दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांव को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांव को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार है। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल नेपॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित और परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
3: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
2: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7:05 हुए हैं और इस समय होता है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के साथ हाजिर हूं मैं आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं के लिए दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा। 7:45 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। कार्यक्रम सुर्खियों में का प्रसारण रात्रि 8 किया जाएगा और फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:15 पर। कार्यक्रम युवा भारती का प्रसारण रात्रि 9:30 पर किया जाएगा और संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे स्मिता मोक्षी का ख्याल गायन रात्रि 10। श्रोताओं, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल यानी रविवार 31 मई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, कल सुबह 11 आकाशवाणी से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात। सुबह की शुरुआत होगी हमारे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के साथ 7:20 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा का आनंद आप लेंगे सुबह 8

0: सुगम संगीत के अंतर्गत 9:15 पर आप सुनेंगे रामकिशोर यादव द्वारा गाए बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर सुनिए सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण। सुबह 10:05 पर सुनिए कार्यक्रम सामुदायिक गान शिक्षण पाठ और फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 10:30 पर। श्रोताओं, इन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत किया जाएगा। आपको पुनः याद दिला दें, कल सुबह 11 आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम। संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक सिसकियां का 5वां भाग आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1 सुनिए कार्यक्रम महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी के योगदान से प्रसारित किए जाएंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए दोपहर 2:00, शाम 5:33, 6:00 और रात्रि 8:30 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की होगी। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए 2:50 पर। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण शाम 7:21 पर किया जाएगा। 7:30 पर सुनिए सजीव फोरन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। इसके अंतर्गत डॉक्टर प्रवीण कुमार जग्गा से आप बातचीत कर सकेंगे। विषय होगा आगामी खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन एवं समसामयिक कार्य। रात्रि 8:00 कार्यक्रम सुर्खियों में आकाशवाणी छतरपुर के योगदान के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम डगर विकास की, रात्रि 8:15 पर। कार्यक्रम का विषय होगा प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। संयोजन एवं प्रस्तुति रविंद्र कुमार प्रजापति की होगी। कार्यक्रम अनुगूंज का प्रसारण रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा और रात्रि 10:00 आकाशवाणी दिल्ली से अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में आप सुनेंगे श्री ए यरैया का सैक्सोफोन वादन। श्रोताओं, ये थे कल यानी 31 मई 2026 रविवार को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11:00 आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। खेत बचाओ अभियान युद्ध स्तर पर किया जाएगा संचालित, कहा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है सेना और मानसून ने पकड़ी रफ्तार, इधर प्रदेश के मौसम ने बदली करवट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11:00 आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। खेत बचाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की सक्रिय भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ये बातें केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान कही।
3: खेत बचाओ अभियान में गांव गांव तक पहुंचने का हमारा प्रयास होगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अधिकारी, हमारे वैज्ञानिक, कृषि विभाग का एक्सटेंशन का अमला, हमारे प्रगतिशील किसान, हमारे केवीके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथी, ये सब के सब जुटेंगे और इसी दौरान एक तरफ हम बेहतर और संतुलित खेती पर चर्चा करेंगे, वहीं कई योजनाओं का लाभ भी, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो हम बना के वहां देने का प्रयास करेंगे, मैकेनाइजेशन के यंत्र बटना है तो उसमें बट सकते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड अगर देना है तो उसमें दिए जा सकते हैं, तो जितनी चीजें व्यवहारिक रूप से हो सकती है उसमें देने का प्रयास करेंगे। ये खेत बचाओ अभियान 1 से लेकर 30 जून तक व्यापक पैमाने पर चलेगा।
2: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि गोमती नदी के नाम पर बने INS गोमती युद्धपोत के कारण लखनऊ का नौसेना से पुराना नाता रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर और ब्रह्मोस निर्माण के जरिए देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रहा है।
4: 2014 तक भारत

0: का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वह बहुत कम हुआ करता था। हम केवल 1000 करोड़ रुपए से भी कम के हथियार और साजो सामान दुनिया को बेच पाते थे, लेकिन आज वही बढ़कर हम लगभग 40,000 करोड़ रुपए के सामान दुनिया के दूसरे देशों को दे रहे हैं। इस तरह के अनेक उपलब्धियां रक्षा क्षेत्र में हम लोगों ने हासिल की है। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह बदला जा रहा है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनते ही सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन का गतिरोध 1 हफ्ते में दूर कर लिया गया है। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, फिलहाल संघर्ष विराम जैसी स्थिति है। जरूरत पड़ी तो तीनों सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने एक मानक तय कर दिया है जो कि भारत किसी भी उकसावे पर कैसे जवाब देता है ये जाहिर कराता है। ये बातें सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड के दौरान कही। इस वर्ष रक्षा अकादमी ने कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, साथ ही मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि हमारे युवा देश की आशा और सामर्थ्य हैं, उनके विचार और चरित्र ही देश का भविष्य तय करेंगे। जरूरी है कि हमारे युवा जो भी काम करें उसमें वे उत्कृष्टता और संवेदना पर विशेष बल दें। राज्यपाल आज रविन्द्र भवन के हंस ध्वनि सभागार में आयोजित सिस्टेक ग्लोरी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीवन में संवेदना का भाव ही सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता है। ममता और करुणा का मोल पैसों से कहीं ज्यादा हुआ करता है, इसलिए भावी जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए कभी भी उन लोगों को नहीं भूलें जिन्होंने आपका सहयोग किया है। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 में उत्साहजनक बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में तीव्र प्रगति के आंकड़े बताए गए हैं। ये सर्वेक्षण वर्ष 2023-24 के दौरान किया गया जिसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवार शामिल हुए। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार भारत में संस्थागत प्रसव वर्ष 2019 से वर्ष 2021 में 88.6% से बढ़कर 2023-24 में 90.6% हो गए हैं। बात मौसम की करते हैं। बारिश की आशा लगाए नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। मानसून ने एक बार फिर से गति पकड़ ली है। अगले 4 से 5 दिन के भीतर केरलम और तमिलनाडु में मानसून के पहुंचने के लिए वातावरण की परिस्थितियां तेजी से अनुकूल हो रही है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तथा लक्षद्वीप और कन्याकुमारी क्षेत्र के कुछ इलाकों में मानसून आगे बढ़ रहा है। इधर नौतपा के बीच मध्य प्रदेश के मौसम ने अचानक करवट बदली है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है, जबकि शेष इलाकों में खासी गर्मी पड़ रही है। प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में तो रातें भी बहुत गर्म रही है। इस दौरान नरसिंहपुर का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसी क्रम में राजगढ़ में 42, खरगोन में 41.6, भोपाल में 40 और इंदौर में 38.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा आधे से अधिक प्रदेश में आंधी तूफान की परिस्थिति भी निर्मित हो सकती है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला जिले में आज वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य जीव अनुश्रवण कार्य को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कान्हा टाइगर रिजर्व में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। विधायक बैतूल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने आज नगर पालिका बैतूल अंतर्गत विभिन्न विकास परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। शहडोल जिले में इस साल समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी लक्ष्य से अधिक हुई है। 25,000 मीट्रिक गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इस साल 29,244 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। सीहोर जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत अब तक 2,555 चेक डैम निर्माण, 10 तालाब निर्माण, 17 सोसर निर्माण और 4 तालाब गहरीकरण जैसे कार्य लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण किए गए हैं। नीमच जिला चिकित्सालय के रेडक्रॉस सभागार में वृद्धजनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। झाबुआ के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी एस बघेल ने आज जिला अस्पताल झाबुआ के ब्लड स्टोरेज सेंटर का निरीक्षण किया और आमजन को रक्तदान के महत्व की जानकारी दी। छिंदवाड़ा जिले में स्कूल छोड़ चुके या नियमित रूप से स्कूल नहीं जा रहे बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जाएंगे। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड खंडवा द्वारा वर्ष 2026-27 में कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत जिले के बेरोजगार युवक और युवतियों को विभिन्न व्यवसायों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा और हार्निया रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा समय पर उपचार के लिए इंदौर में 2 दिवसीय निःशुल्क हार्निया जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। खेत बचाओ अभियान युद्ध स्तर पर किया जाएगा संचालित, कहा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है सेना और मानसून ने पकड़ी है रफ्तार, इधर प्रदेश के मौसम ने बदली करवट। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। अभी दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: जय जवान जय किसान।
1: चौपाल कार्यक्रम सुन रहे सगाई भैया बहनन का रूबी बहन की राम राम। और हमारे संगे आज बैठे हैं रंगाई भैया, तो रंगाई भैया आपके लिए भी हमारी राम राम।
0: राम राम रूबी बहन और सुनबे बारे सब भैया बहनन का जय भी हमारी राम राम। और सुनाओ रूबी बहन का हाल चाल है?
1: बस बढ़िया है, गर्मी पड़ रही थी तो नेक बरसात हो गई, तो बस गर्मी से नेक राहत मिल गई है, बस जो ये
0: बिल्कुल सही बात है बिल्कुल।
1: और भैया देखो अपा जो अबे खेत हैं वे तो खाली पड़े हैं, और कछु भैया के खेतन में जो है साग भाजी लगी हुई है।
0: सही बात है।
1: और कोनू कोनू भैया ने जो है ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती कर रही थी तो वो ठाड़ी है। तो देखो भैया अपा देश में जो अपा किसान है इनको बड़ो ही महत्व है।
0: बिल्कुल सही बात है, कैसे कि अपने देश की सबसे बड़ी आमदनी अगर है तो वो खेती से तो अपना देश कृषि प्रधान देश है। और जा देश में हमारी सरकार भी चाहते कि हमारे जो किसान भैया है उनके लाने आगे बढ़ाएं, ताकि कावे ज्यादा से ज्यादा खेती करें और अनाज उत्पन्न हो, जैसे हमारी आमदनी देश की बढ़े,
1: देश की आमदनी बढ़े, अपन के लाने अन्न मिले खाने को देश की जनता को।
0: सही बात।
1: तो जो मान लो कि आप जो किसान है यानी कि आप अन्नदाता है, वो आप जो है एक देश बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है अपने जीवन।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और अपनी सरकार भी जो चाहते है कि वो खुश रहे खुशहाल रहे, जाके लाने अपन देख रहे हैं कि अपने प्रधानमंत्री जी ने कितने की योजनाएं चला रखी बन के लाने है ना। और तो भैया ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।
0: अरे बहुत अच्छी बात कही रूबी बहन आपने, जा किसान मानधन योजना तो बहुत अच्छी योजना है। जहाँ मैं कहा है कि अगर कोई किसान ऐसो है जहाँ पे कम जमीन है और बाय बेचारे जैसे बुढ़ापो यानी 60 वर्ष की उम्र जब हो जाए तो अब वो खेती किसानी मान लो नहीं कर पाएगा या बुढ़ापो आ जाए तो बाकी लाने एक पेंशन को प्रावधान करो है जहाँ।
1: हाँ, और भैया जहाँ मैं कहा है कि जो एक अंशदायी योजना है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: और जी मैं कहा है कि बाकी लाना जो है प्रीमियम देना पड़ा था है ना। और भैया देखो जैसे अपन अपने जो किसान भैया बहन है वो जुड़ के और जय योजना को लाभ ले सकते हैं।
0: भैया
1: जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, जो योजना जो है किसानों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर
0: रही है। सही बात है
1: ना। और भैया जो जो है भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। और भैया जहाँ मैं कहा है कि जो 60 साल की आयु के बाद बिन के लाना है रुपये 3,000 की हर महीना की।
0: बिल्कुल बिल्कुल। पर बात जा है रूबी बहन के जहाँ मैं कहा है कि अगर जो हमारा किसान भैया है और वहाँ पे कम जमीन है और बाकी उम्र अगर 18 और 40 साल के बीच में है
1: तो वो जा
0: योजना में भाग ले सकते है। जहाँ मैं कहा है कि जैसे अगर बाकी उम्र 18 साल है तो वो 55 रुपये महीना बचाए और बाकी उम्र अगर मान लो 40 साल हो गई तो वो 200 रुपये महीना बचाए।
1: यानी कि आपको कहने को मतलब हाँ, जो है कि 18 से 40 बरस तक के बीच के जो भी किसान हाँ, भैया बहन है बुझा में
0: थोड़ी सी अगर
1: आप सकते हैं
0: हाँ, यानी
1: और भाई हिसाब से इनकी आयु के हिसाब से ही जो हाँ, किस्त बनेगी
0: यानी कि वे अपनों खातों जो है ना SBI स्टेट बैंक में या पंजाब बैंक में या कहीं भी अपने सरकारी बैंक में जाके वे आवेदन करे मानधन योजना के बारे में और बा में अपनो खातो खुलवाए और बा में राशि जमा करें। जमा करते रहेंगे तो वो क्या होगा कि धीरे धीरे करके बाद जब जैसे आयु 60 बरस की हो जाए तो बिन के लाने 3,000 रुपया प्रति महीना आजीवन उन्हें पेंशन के रूप में प्राप्त होती रहेगी। तो एक बहुत अच्छी योजना है बहन जी,
1: अच्छी योजना है। और भैया जहाँ में अगर अपन दस्तावेजन की बात करें तो वो जहाँ में देखो एक तो आधार कार्ड है,
0: बिल्कुल सही बात,
1: खाता होना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। बैंक की पासबुक और अपन पहचान को जो
0: पहचान पत्र
1: यानी पैन कार्ड होते हैं, आधार कार्ड होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस जो सब,
0: और जो अपन जैसे खेती है तो बाकी खसरा खतौनी
1: यानी की जमीन के दस्तावेज जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है ना। तो भैया आप जो है या तो बैंक में जाके आवेदन कर सकते हैं ऑफलाइन, या फिर भैया अपन जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो
0: ऑनलाइन आवेदन करके और वे कागज लेके आप बैंक में जाके वे कागज जमा करो तो भैया आप है ना भाई योजना से जुड़ जाए, और जब योजना से जुड़ जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप अपनी राशि बचत करके हर महीना जमा करो और जैसे ही 60 साल की उम्र होगी तो आपकी पेंशन चालू हो जाएगी।
1: और एक और बात भैया, अगर मान लो बीच में जो भी लाभार्थी है बाकी मृत्यु हो जाती है आवेदक की, तो बाको जो आधी पेंशन जो है
0: बिल्कुल जामे हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही आपने कि देखो भैया अगर अकस्मात कोई किसान भैया की अगर मृत्यु हो जाते है दुर्घटना में वो चलो जाते है तो जामे अच्छी बात ये है कि जैसे मान लो 3,000 पेंशन है तो बाकी 1,500 रुपया महीना बाकी घर पर यानी पत्नी का जे हमेशा मिलेगी। तो देखो वो कितने अच्छी योजना है।
1: अपन किसान भैया से यही कहेंगे कि जैसे जुड़े वैसे तो बहुत से जुड़ा रहे हैं, जैसे किसान अगर
0: जो बचते हैं या रह रहे हैं या जिन्हें जानकारी नहीं है, तो बिन किलाने बता देते हैं कि भैया आप जल्दी से जल्दी जामे आप आवेदन करें और किसान मानधन योजना को लाभ लें।
1: और भैया देखो अब अपन ये चर्चा को तई विराम देते हैं और अपन जो ये उम्मीद कराते हैं कि अपन भैया जी बात को समझ गए हुई हैं। और भैया देखो आओ अपन रहते हैं घर परिवार,
0: बिल्कुल सही,
1: और घर परिवार में जो अब 4-5 सदस्य होते ही हैं और ज्यादा भी हो सकता है। अब वहां में कहा है कि नेक छोटी थोड़ी बहुत खटपट तो होते ही रहते हैं ना, कहा है जब 4 आदमी होते हैं यानी कि 4 बर्तन होते हैं तो वो आवाज तो करते ही है, पर भैया जी थोड़ी बनी रहे तो ठीक है। और भैया जो ज्यादा बढ़ जाते हैं तो भैया जो ही होते हैं घरेलू हिंसा।
0: हाँ बहुत अच्छी बात कही रूबी बहन, बात जाए कि जब घरेलू हिंसा लगातार बढ़ जा रही है और हम तो जो कह वो चाह रहे हैं कि भैया आप पढ़ लिख के जब देखो अब आजकल को जमानो पढ़ लिखो जमानो है, सब मोड़ा मोड़ी पढ़ रहे हैं और अगर हम जा घरेलू हिंसा में अगर वो करेंगे और जाए नहीं रोकेंगे तो निश्चित तौर पर जाको प्रभाव हमारे बच्चन पे पड़ा थे और आगे जाके इनको विकास रुकाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम आपस में सब मिलजुल के रहे, हमें बिल्कुल आपस में
1: आपसी सामंजस्य बना के रखे और एक दूसरे को सम्मान।
0: हाँ और अगर आप लग रहा हो कि कोई हमारे अड़ोस में पड़ोस में अगर कोई ऐसे घरेलू हिंसा से पीड़ित हो रहा हो तो हम जाके आपस में बाकी सहायता करें, सामंजस्य बिठाएं, आपस में समझौता करें और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना हो, ऐसी समझाइश दें।
1: और भैया जाके लाने कानून भी बनाओ गए है,
0: बिल्कुल सही बात है। अगर कोई नहीं मान रहा हो और भैया

0: वो बिल्कुल जबरन बाप है, वो तो घरेलू हिंसा पे उतर ही रहो है, तो फिर कानून को सहारो लें। खास कि कानून के सहारे से भैया वो भाई सजा मिलेगी और वो आगे चल के ऐसे काम नहीं करेगा।
1: तो भैया अपन तो अपाए भैया से जो ही उम्मीद कर रहे थे कि अपाए घर परिवार में चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, कोनो भी हो, आपसी सामंजस्य और एक दूसरे को सम्मान करत रहे, अपाए जीवन यापन करें और अपाए घर को जो वातावरण है वो खुशनुमा और खुशहाल बनाए। तो भैया और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी ही उम्मीद के संगे अब अपा जो चौपाल है वहाँ से अपाए चलवे की हो रही है बेला, तो अपन अपाए भैया से ले लेते हैं आज्ञा। तो सगाई भैया बहन को रूबी बहन
0: और रंगाई भैया की राम राम, जय जवान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी है? अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ
2: परम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है
1: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: जय जवान जय किसान किसान वाणी कार्यक्रम सुनवे आ रहे सगाई भैया बहनन का रूबी बहन
5: और रंगई भैया की राम राम,
4: राम राम। और देखो रंगई भैया अब अपन बात कर रहे थे अपने किसान भैयान के से के वे मानधन योजना किसान मानधन योजना को लाभ लें।
5: सही बात।
4: और भैया देखो ऐसी बहुत सी योजनाएं अपने किसान भैया बहनन के लाने चलाई जा रही हैं जिससे के वे जो है इन योजनाओं को लाभ लेके अपना जीवन जो है खुशहाल बना सके। अब भैया देखो भैया अपने जो किसान भैया अभी कराते हैं खेती और भैया खेती से अपन देखते हैं कि सालाना की आमदनी होते हैं कौन भैया अगर छमाई की तो जी
5: और यानी आपको कहने को है कि जब खेती में का रोजाना तो आमदनी होती नहीं है
4: रोजाना तो आमदनी
5: जब फसल उगी आएगी जब आप बेचेगी तब जाके उनके लाने पैसा रुपया मिलेगा तो जा बीच में का होता है कि
4: जैसे खेत की बीजन बीजन के लें खाद बीज के लें अपन के लाने पैसा की जरूरत होती है।
5: इस तरह की जो समस्याएं बीच बीच में आती थी तो जे समस्या का जे हमारी सरकार ने समझो और जब इनने समझो कि भैया किसान भैयान पे अगर बीच में पैसा रुपया खत्म हो जाते हैं तो कई किसान तो खेती नहीं कर पाते कैसे बिन
4: साहूकारन से पैसा लेते
5: ब्याज पे लेते तो वो सब पैसा ब्याज में चलो जाते तो,
4: हाँ।
5: तो बड़ी मुश्किल होती
4: तो
5: इन सब बातन को ध्यान में रखत भाई हमारी सरकार ने कहा है जो छोटे किसान है उनके लाने का एक क्रेडिट या कार्ड यानी किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में एक लिमिट जैसी व्यवस्था करिए
4: हाँ।
5: ता में कहा है कि भैया आप एक निश्चित राशि के लाने आप एक बैंक से निकाल सकते हैं और जब जैसे ही आपके लाने जब वो पैसा आ जाए फसल बिक जाए तो आप
4: जमा कर दें
5: और जो राशि में एक और व्यवस्था का है कि बहुत कम ब्याज
4: यानी
5: 7% ब्याज और अगर कोई किसान भैया ऐसो है जाको रिकॉर्ड अच्छो है जो समय पे जमा करते है
4: तो बाकी लाने
5: 3% की सब्सिडी भी दी जाते है
4: और मैंने ब्याज में कमी कर दी जाते और भैया देखो
5: कितनी अच्छी व्यवस्था करी है सरकार ने
4: तो अपन तो यही कहेंगे कि वैसे तो आप आए जो किसान भैया बहन ने बिन्ने केसीसी बनवा रखी
5: हाँ,
4: है
5: बिल्कुल
4: ज्यादातर है ना जो केसीसी के नाम से ही जाना था जाए हाँ, कार्ड को
5: किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के नाम से जाना था जाए और हाँ। देखो भैया जिन भैया पे अगर जो केसीसी कार्ड नहीं है तो वे है ना अपने खसरा खतौनी बैंक हाँ। पासबुक और आधार कार्ड पैन कार्ड जिस सब कागज लेके आप बैंक में संपर्क करो और काय संपर्क करके आप अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाओ और समय पे अगर आपके लाने पैसा की जरूरत है तो आप तत्काल पैसा ले और फिर जब जैसे ही आपकी फसल बिक जाए उपज बिक जाए तो आप फसल बेच के
4: यानी कि भैया जो अपन ऋण ले रहे हैं जो लोन ले रहे हैं चुकानो समय पे
5: बंद हो जाए वहाँ में
4: हाँ। और भैया देखो 1 तारीख से जो है खेत बचाओ अभियान चलाओ जा रहा है आप जो कृषि मंत्री है ना माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान तो मैंने भी जो ही बात कही है कि 1 तारीख से ले 1 जून से लेके 30 जून तक जो खेत बचाओ अभियान चलाओ जाएगा बाम है जो है किसान भैया बहनन के लिए सभी तरह की जानकारी दी जाएगी और जई में भैया बिन ने जो बात भी कही कि बिन के लाने किस जिन जोन भैया के पास जो कार्ड नहीं है जो केसीसी नहीं है किसान क्रेडिट तो बिन के लाने किसान क्रेडिट कार्ड बना के भी देंगे बैंक में
5: कितनी
4: अच्छी बात है किसान भैया बहन के लाने
5: जानकारी ले आप और अगर आपके लाने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने तो आप जामे भाग लेके
4: हाँ।
5: भैया आप जामे तुरंत आप अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाओ
4: हाँ वो दस्तावेज तो वही है भैया आधार कार्ड पहचान पत्र जमीन के कागजात
5: हाँ। सब लेके आप आवेदन करो और आवेदन करके आप अपना कार्ड बनवा लियो
4: और भैया जी को आप जो है लाभ लो है ना भैया और अपन तो अपन जो बातचीत कराते हैं अपने कार्यक्रम में जय के लाने कराते हैं कि अपने जो किसान भैया बहन है वो जो है अपने बातचीत को सुन के बाको लाभ लें, है ना भैया। और देखो अपन जो है अपने भैयान के लाने बहुत सी ऐसी बातें सुन बात हैं और अपने जो अतिथि विशेषज्ञ आते हैं वे भी ऐसी जानकारियाँ देते हैं जिससे कि अपने किसान भैया बहन इनको लाभ लें। हाँ तो भैया देखो अब पड़ रही है गर्मी और गर्मियों में जो अपने अपन देखो अपन अपने फसल को ध्यान रखाते हैं अपा ध्यान रखाते हैं तो भैया ऐसे ही अपा पशुधन है वाको भी अपन के लाने ध्यान रखना है। तो भैया ऐसी ही अपन एक बातचीत अपने भैया के लाने सुन पा रहे हैं जी को विषय है गर्मियों में पशुपालन प्रबंधन और भैया जी में जो है जानकारी दे रही हैं डॉक्टर गायत्री कश्यप और जिनसे बता रहे हैं अपा भैया श्री एस एस चौधरी।
5: सुना
6: पशुपालक भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो गर्मी के दिनों में देखा जाता कि हमारे पशुधन भी बेचैन हो जाता है, ठीक से खाना नहीं खाता है, चारा दाना इत्यादि हम देते हैं लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से पशुओं में बेचैनी रहती है और इसका सीधा प्रभाव दुग्ध उत्पादन पर पड़ता है या पशु फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो गर्मियों के दिनों में पशु पालन प्रबंधन कैसे किया जाए ताकि अच्छा से अच्छा उत्पादन मिले, इसी संदर्भ में जानकारी के लिए आज हमारे कार्यक्रम में हैं डॉक्टर गायत्री कश्यप, विकासखंड पशु चिकित्सा अधिकारी जिला शिवपुरी। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पशुपालन प्रबंधन में मुख्य रूप से ये गर्मियों के मौसम में किन किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए?
7: धन्यवाद। सबसे पहले पशुपालक भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसे कि गर्मी के दिनों में ज़्यादा तापमान होने के कारण एवं आर्द्रता भी ज़्यादा होने के कारण पशुओं में बेचैनी बढ़ जाती है। इसके अलावा पशुओं के भूख में कमी, अपच या बदहजमी हो जाना और दुग्ध उत्पादन में कमी हो जाना और लू लगना आदि समस्याएँ आती हैं। तो इसके पहले हम ये जानेंगे कि ये समस्याएं आती क्यों हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में पशुओं का क्या है, जो उनके नॉर्मल जो उनके आंत के बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो गर्मी के कारण उनका उनकी संख्या का कम हो जाना, इसके अलावा इस कारण इसमें अपच या बदहजमी हो जाती है, इसके अलावा इनका ज़्यादा पसीना निकलता है जिसकी वजह से मिनरल्स सारे मतलब पसीने से ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जिससे उनके शरीर में इन सब चीज़ों की कमी हो जाती है। इसी कारण से इनको कॉन्स्टिपेशन या बदहजमी जैसी दिक्कत आती है। इसके अलावा भूख में कमी और इनको मिनरल विटामिन की कमी हो जाती है जिससे इनका जो आंत का काम करना होता है, आंतों का और जो आमाशय का काम करना है, इनका जो फोर स्टमक मतलब जुगाली करने वाला जो आंतें हैं वो इतने अच्छे से काम नहीं करती क्योंकि इनमें इन सब चीज़ों की कमी हो जाती है। तो इसके लिए हमें इसका प्रबंधन के लिए हमें तीन चीज़ों का देखना ज़रूरी है।

0: ले सके। इसके लिए हमें जो आवास में पशुओं की संख्या है वो उनकी जगह के हिसाब से मतलब उसके अनुपातिक रूप से होना चाहिए। जैसे 35 स्क्वायर फीट एक पशु के लिए चाहिए जगह, मतलब बनने के लिए,
1: जी
0: तो उसके हिसाब से हमें जैसे 10 पशु हैं तो उसके हिसाब से उसका स्थान होना चाहिए। इसके अलावा उसमें पानी और खाने की व्यवस्था भी उसमें ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें उनका आवास प्रबंधन करना चाहिए। और उसमें मतलब गोबर की नली अलग से 1 फीट की होनी चाहिए, उनकी खड़े होने की जगह जैसे 5 फीट होनी चाहिए, और उनके जो खाने का नाद होता है, हौदी जिसको बोलते हैं, उसको भी ऐसे मतलब 2.5 फीट चौड़ी, 2.5 फीट लंबी होनी चाहिए, जिससे उसमें प्रॉपर पानी मतलब स्टोर रहे, खाने पीने की व्यवस्था प्रॉपर बनी रहे। और जैसे जो 1 1 फीट के पीछे जो हम जगह छोड़ते हैं उससे यूरिन, उसकी मतलब उसका मूत्र और गोबर वगैरह उसी में गिरे, जिससे वहाँ पर हाइजीन भी मतलब स्वच्छता का भी अपन ध्यान रख सकें। तो ऐसे उनका आवास प्रबंधन करते हैं हम। और आवास प्रबंधन के अलावा इसमें जैसे गर्मी ज़्यादा होती है तो हमें उनकी खिड़कियों को जूट वगैरह, जूट के और ये जो बोरियाँ होती हैं उनसे उनको ढक देना चाहिए। और इसमें लगभग 80% जगह उसको ढक देना चाहिए, और 20-30% गर्मी के दिनों में हमें खुला भी रखना, जिससे उनका
1: पर्याप्त
0: वायु
1: ऑक्सीजन
0: का,
1: मिलती रहे,
0: हाँ,
1: हवा का
0: हवा
1: आवागमन
0: का
1: बना रहे।
0: आवागमन बना रहे।
1: जी
0: इसके अलावा जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जो हाइब्रिड जैसे क्रॉस ब्रेड जो गाय होती हैं और जो भैंसे होती हैं उनके लिए हमें तो अलग से कूलर या स्प्रिंकलर की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप इन सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर सकते तो कम से कम उनको 2 बार उनको नहलाने का प्रबंध जब अधिक गर्मी हो तो उस टाइम पे करना चाहिए।
1: लेकिन जो संकर पशु होते हैं ना, वो तो बहुत ही नाजुक होते हैं,
0: हाँ, तो
1: उनको
0: उनके या तो
1: उनको तो लू
0: नहान,
1: लगने की संभावना ज्यादा रहती है।
0: हाँ, संकर पशु और भैंस में भी क्योंकि उनकी चमड़ी जो है मोटी होती है तो उनका हीट का जो आदान प्रदान है वातावरण से वो होने में भी मतलब इस वजह से वो लू के लिए ज़्यादा संवेदनशील होती हैं,
1: जी
0: इसलिए उनमें ये मतलब अलग से अवन को प्रबंध करना चाहिए।
1: लेकिन हम देखते हैं कि कुछ पशुपालक भाई गर्मी के दिनों में भी अपने पशुओं को पेड़ के नीचे बांध देते हैं छाया में,
0: हाँ,
1: तो
0: इसके
1: वहां
0: हाँ
1: पर लू लगने की कोई संभावना रहती है।
0: वहाँ पे भी लू जैसे इस समय का जो तापमान है 45 डिग्री और 45-46 डिग्री, इस समय में वहाँ पर भी नुकसानदायक, क्योंकि वो गर्म हवा डायरेक्ट संपर्क में आती है तो इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। इसके अलावा हमें इस टाइम पे तो ऐसा करना चाहिए, 10 बजे तक पशुओं को अगर कोई चारे के लिए छोड़ना है तो 10 बजे सुबह तक छोड़ के वापस बांध देना चाहिए। जो ये मेन हीट वेव मतलब ये लू लगने का टाइम है वो 10 से 4 का है, और शाम को भी 4 या 5 बजे के बाद ही पशुओं को बाड़े से छोड़ना चाहिए चरने के लिए, या उनका जो स्पेस है मतलब जो बाहर स्पेस रहता है उसमें चरने के लिए छोड़ना चाहिए।
1: जी
0: और इसके अलावा आवास के अलावा इसमें जैसे जूट के जो पर्दे भी लगा रहे हैं तो इस समय पे उनको पानियों से छिड़काव करना चाहिए, जिससे वहाँ का वातावरण ठंडा और वायु का आदान प्रदान बना रहे। तो इनसे इनका दुग्ध उत्पादन मतलब इनका मेंटेन रहेगा, क्योंकि इनकी जो तापमान में एनर्जी मतलब जो एक्स्ट्रा लग रही है वो सेव रहेगी, मतलब तो
1: जी
0: इनका उत्पादन
1: अच्छा,
0: बना रहेगा।
1: जो आहार व्यवस्था है पशुओं की,
0: जी
1: उसमें सूखा चारा, हरा चारा, दाना मिक्सचर वगैरह एक संतुलित होना चाहिए,
0: जी
1: तो हरे चारे के बारे में कुछ बताएं।
0: जी हरे चारे में हमें इस समय पे जैसे हरे चारों की भी बहुत ज़्यादा कमी होती है, बहुत कम हरा चारा होता है, तो इसके लिए हमें पहले से ही बहुवर्षीय जो चारे होते हैं जैसे संकर नेपियर घास इनका भी मतलब होना चाहिए, जिससे एट अ टाइम हरा चारा हम उनको प्रदान कर सके। इसके अलावा आप जो हरे चारे का जो अचार बोलते हैं साइलेज या हे मतलब जो सूखी घास होती है, जो ज़्यादा प्रोटीन वाली घासें हैं जैसे बरसीम लूसर्न, इनको सुखा करके रख लेना चाहिए। जैसे मार्च तक तो होती हैं ये, तो
1: जी
0: इनको सुखा करके अगर हम रख लेते हैं तो इस समय पे हम दे सकते हैं, इससे भी हम इनके हरे चारे की पूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा हम साइलेज भी बनाते हैं, इसमें क्या हरे चारे को छोटा छोटा करके हम गड्ढे के अंदर मतलब उनको रखते हैं, और जब ये जब जिस सीजन में हरा चारा नहीं मिलता है उस सीजन में

0: हम इसको साइलेज के रूप में इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हरे चारे के अलावा हम इसमें जो दाने का मिश्रण तैयार करते हैं नॉर्मली, तो 40% इसमें दाना मतलब वो कार्बोहाइड्रेट वाली जैसे गेहूं और ज्वार वगैरह मिलाते हैं, और 20-25% हम खली देते हैं। तो गर्मी के दिनों में हमें कार्बोहाइड्रेट वाला जैसे दाना जो है वो कम देकर जो प्रोटीन और वसा वाला पार्ट है ना उसको ज़्यादा देना चाहिए। जैसे खली का मतलब जो अनुपात है वो बढ़ा दें, जिससे हम ज़्यादा एनर्जी वाला उनको फूड देंगे तो हमें कम दाने देने की आवश्यकता पड़ेगी। और हरा चारा अगर इस समय पे अगर पहले से अगर हम इसकी व्यवस्था करते हैं तो हरे चारे की अगर हम देंगे ज़्यादा मात्रा में देंगे तो दाना कम हो जाएगा उस अनुपात में। तो ये जो जो हम इसको चयापचय एसिडोसिस नाम की जो बीमारी होती है पशुओं में मतलब गर्मी के दिनों में ज़्यादा दाना देने की वजह से जो होती है उससे हम निजात पा सकते हैं।
1: जी
0: इसके अलावा हमें जल की भी व्यवस्था गर्मी के दिनों में ज़्यादा देना चाहिए। मतलब जैसे 80 लीटर पशु मतलब पीता है पानी
1: औसतन
0: तो औसतन रूप से, तो इसको हमें 2-3 भाग में ठंडे नाद में इसको देना चाहिए। और हमें जैसे आसपास जो है पत्ते मतलब पेड़ पौधे भी लगाना चाहिए जिससे वहाँ का वातावरण
1: ठंडा रहे।
0: अच्छा रहे, तो अच्छा रहेगा।
1: जी, जैसे पानी है, हम देखते हैं कि गांव में कुछ पशुपालक भाई तालाब का पानी पिला देते हैं, या गड्ढों में भरा हुआ पानी पशु पी लेते हैं और बीमार भी पड़ जाते हैं। तो इसके लिए क्या सलाह है आपकी?
0: जी हम इसमें जैसे तालाब और गड्ढों का पानी तो पशुओं को नहीं देना चाहिए, लेकिन क्योंकि रुका हुआ पानी हमेशा वो कंटामिनेशन मतलब उसमें प्रदूषण
1: गंदा
0: और
1: होता है।
0: हाँ गंदा होता है। इसके लिए हम ये कर सकते हैं उसका स्वच्छ पानी निकाल करके जो टंकियाँ होती हैं उसमें जो बेकिंग बेकिंग सोडा है और एक वो आती है लाल दवा, उससे हम 1% लाल दवा से नीचे टंकियों को साफ करके उसमें पानी भर के जो नीचे ऊपर का अच्छा पानी है वो दे सकते हैं, अगर पानी की शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है तो इससे। लेकिन उसको शुद्ध पानी ही जो नीचे बोरिंग का पानी है वो ही देना चाहिए, और 1-1 हफ्ते में उस पानी को चेंज करें।
1: कितने बार पानी दें?
0: दिन में गर्मी के दिनों में 2 बार उनको पानी अवश्य रूप से
1: कम
0: दें,
1: से कम
0: कम से
1: यदि
0: कम
1: आवश्यकता पड़े
0: तो
1: तो और
0: तीन
1: भी
0: हाँ
1: 3 बार
0: जैसे
1: भी
0: इस
1: दें।
0: समय की गर्मी है तो 3 से 4 बार भी उनको पानी देना चाहिए, क्योंकि मेनली जो पानी का कमी के कारण ही उनको सारी बीमारियां हो रही हैं। पानी की अगर उनको होगी तो उनके अंदर जो मतलब टॉक्सिन भी आ रहे हैं वो भी पानी अगर वो ज़्यादा पियेंगे तो वो निकल जाएंगे और उनको बीमारियों से सामना नहीं करना पड़ेगा।
1: कोई बीमारी हो सकती है क्या इन दिनों पशुओं?
0: हाँ जी बीमारी एक तो इस समय पॉइजनिंग क्या है पशुओं में बहुत ज़्यादा, क्योंकि चारा कम होता है जो टॉक्सिक जैसे गाजर घास है इनको खा लिया, और भी एक दो वो वाले पौधे भी खा करके पशुओं में विषाक्तता आ जाती है। तो इस समय पशुओं को अगर हम हरा चारा और सारी चीज़ें अच्छे से देंगे तो वो इन विषैले हुए पौधों को नहीं खाएंगे। इसके अलावा गर्मी के दिनों में इस समय पे हमें डिवर्मिंग मतलब कीटनाशन जरूर आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए, और उनके ऊपर जो जो बाह्य परजीवी हैं जैसे चीचड़ और जुएं वगैरह हैं इनके लिए भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। तो
1: तो
0: जो
1: बाह्य और आंतरिक परजीवी
0: हाँ दोनों
1: दोनों के
0: परजीवियों
1: लिए
0: के
1: दवाई
0: लिए
1: देना आवश्यक है।
0: कृमिनाशन करना बहुत ज़रूरी है,
1: जी
0: तो वो निकटतम जो पशु चिकित्सालय है वहाँ से संपर्क करके कृमिनाशन जरूर करवाएं इस समय। इसके अलावा गर्मी के दिनों में गर्मी के बाद होने वाली कुछ बीमारियां हैं जैसे गलघोटू और लंगड़ा बुखार और मुंह पका खुर पका रोग, इनके टीके डिवर्मिंग के बाद कृमिनाशन के बाद अवश्य करवा लेने चाहिए, क्योंकि जून जुलाई में यही मई जून का जो टाइम है इस टाइम पे ही अगर हम उनको प्रॉपर इस इन इन बीमारियों के लिए टीकाकरण करवा लेते हैं तो बरसात में इन इस बीमारी से निजात पा सकते हैं, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं ये जानलेवा हैं और इन इन बीमारियों से पशुओं की मृत्यु तक हो सकती है।
1: जी, तो डॉक्टर गायत्री कश्यप, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने बताया कि कि गर्मियों के दिनों में पशुओं का प्रबंधन कैसे करना चाहिए ताकि पशुओं की उत्पादकता अच्छी बनी रहे, दूध उनसे पर्याप्त मिले और पशु बीमार भी ना हो
0: और उनमें लू भी नहीं लगे
1: और किसी तरह से उनका लू के प्रकोप से भी पशुओं को बचाया जा सके। आपको जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया बहनों, अभी अपन सुन रहे थे गर्मियों में पशुपालन प्रबंधन और जा विषय पर जानकारी दे रही थी डॉक्टर गायत्री कश्यप और जिनसे बता रहे थे अपने भैया SS चौधरी। तो भैया कितनी अच्छी जानकारी
3: सुनी बहन, बहुत अच्छी जानकारी है और जहाँ से हमारे किसान भैया समझ गए होंगे कि हमें अपने पशुओं की सुरक्षा कैसे करना है और इनसे कैसे हमें दूध उत्पादन करना है।
2: और भैया देखो अपन ने बातें भी कर ली और अपन भैया के लाने जानकारी भी सुनवा दी और अब सुनवा रहे हैं अपन भैया के लाने जो लोकगीत।

0: अभी अपन सुन रहे थे मोहनसिंह यादव को गाओ भाव, जो ग्रीष्मकालीन
1: लोकगीत और या लोकगीत का ये गा रहे थे मोहनसिंह यादव और भी बहन जो लोकगीत, तो आपने बहुत अच्छा सुनवा।
0: हाँ भैया, अब अपन चला चलत में अपन अपने भैया के लाने मौसम की जानकारी दिए दे थे।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और भैया देखो, जो अधिकतम तापमान है वो 36 डिग्री रहो और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। और हवा की गति की अगर अपन बात करें तो वो रही 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और भैया देखो, अब मौसम में एक ठंडक हो गई है, तो अपन भैया से जो ही कहेंगे कि जब मौसम में अपन जो है स्वास्थ्य को ध्यान रखें, और कहे से कि जब अपन स्वस्थ रहते हैं तभी अपन काम में मन लगाते हैं, है ना, और अपन सगाए काम अच्छे तरीका से करते हैं, है ना भैया।
1: बिल्कुल, आपने सही बात कही रूबी बहन। तो अब हमारे अपन,
0: हाँ, और भैया देखो, जो भी अपने काम काज है अपन को बिनको सही तरीका से सही टाइम पे करना है, काय से के टाइम पे करे गए काम जो
1: अब है काय खेती किसानी में। अब अपन ने जैसे कछु किसान भैया ऐसे हैं जिनने जुताई नहीं करी है, तो बेबी अब गहरी जुताई कर सकते हैं, काय से के अब भी धूप तेज हैगी यानी घाम पड़ रही, तो का होगा गहरी जुताई कर लेंगे तो बाद में का है जो नीचे की माटी ऊपर, ऊपर की माटी नीचे आ जाए, तो जो हानि पहुंचाए वाले फसल के लाने कीटाणु होते हैं वे बाद में मर जाए, तो जा से का है उत्पादन अपनो अच्छो होगा।
0: अच्छो,
1: तो हमारे केवी को मतलब जो ये किसान भैया ध्यान रखो, अपने खाद की बीज की तैयारी कर लो, बीज आप उपचारित करके बुने, आप जो तैयारी रखो और आपके लाने आपकी जो जैसे मान के चलो बीज है वाय उपचारित करके वो दवाई दवाई वाई अब ऐसी ला के दर रख लियो, तो अगर
0: इन... जो आगामी फसल है बाकी तैयारी पहले से ही करके
1: पहले से करेंगे तो अपने कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे चल के,
0: अच्छा उत्पादन मिलेगा।
1: बिल्कुल।
0: और भैया, और अपन को कहा है कि जो भी काम काज है एकदम से होते होते भागने की जरूरत नहीं होगी।
1: और संग में एक बात और ध्यान रखो, हमारे किसान भैया से हम कहना चाह रहे हैं कि देखो अब स्कूल खुलवे को टाइम है, यानी कछु जगह तो 1 अप्रैल से खुल ही गए स्कूल,
0: तो अब बात
1: हाँ, तो हम जो चाह रहे हैं कि किसान भैयाओं आप अपने छोटे जो बच्चा है बिनके लाने स्कूल जरूर भेजने
0: हैं। हाँ, ये ध्यान रखो
1: कैसे कि आज भी कछु हमारे किसान भैया ऐसे हैं जो खेती किसानी में अपने बच्चे ने उलझा लेते हैं और कहा है कि बे स्कूल नहीं जाते हैं, तो हमारा एक भी बच्चा वंचित ना रहे कोई गाँव को, तो जब बात को आप विशेष ध्यान रखो।
0: और भैया आओ, आप कार्यक्रम से हो रही है चलवेगी बीरा, तो अपन किसान वाणी कार्यक्रम से सगाई भैया बहन से ले लेते हैं आज्ञा, तो रूबी बहन और
1: रंगाई भैया काजे आज्ञा देव सब किसान भैयान काजे
0: राम राम जय जवान जय किसान।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को

0: और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि
1: सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान।
0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इसे हम अपने भोपाल केंद्र से

0: सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 प्रमुख निष्कर्ष, चुनौतियां और संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 कल जारी किया, जिसमें स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं में प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। क्या है इस सर्वेक्षण का महत्व, क्या है इसके प्रमुख पहलू और क्या है आगे की संभावनाएं, इन सब पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव सुश्री आराधना पटनायक। आराधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में।
3: सभी को मेरा नमस्कार।
2: जी आराधना जी, ये जो सर्वेक्षण जारी हुआ है, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या NFHS कहा जाता है, इसका उद्देश्य क्या है और जो NFHS 6/2023-24 के आंकड़ों के आधार पर जो जारी हुआ है कल, उसके प्रमुख निष्कर्ष क्या है।
3: ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण अभी जारी हुआ है, ये 2023-24 के लिए जारी हुआ है, ये 6th सर्वेक्षण है। ये सर्वेक्षण लगभग 6.79 लाख घरों को कवर किया है और इसमें लगभग 7.16 लाख महिलाएं और लगभग 1 लाख पुरुषों को कवर किया गया है। ये पूरे देश में ये सर्वेक्षण हुआ है और इस सर्वेक्षण के माध्यम से मुख्य रूप से हम कई सारे स्वास्थ्य के जो मानक हैं, उनमें क्या प्रगति हुई है, उस पर हम मुख्य रूप से ये सर्वेक्षण करते हैं। चाहे स्वास्थ्य की हम बात करें, चाहे पोषण की बात करें, महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें, परिवार नियोजन की बात करें, बच्चों के स्वास्थ्य की बात करें, तो ये सभी चीजें इस सर्वेक्षण में कवर करते हैं। इस बार जो ये सर्वेक्षण हुआ है, तो इसमें मुख्य रूप से जो हमें सबसे अच्छी उपलब्धि मिली है, वो है कि हमारे जो प्रसव अस्पतालों में जो होता है, वो प्रसव हमारा लगभग 88.6 से बढ़कर 90.6 हो गया है। फिर जो बच्चों का टीकाकरण होता है, वो लगभग 96% से ऊपर चल रहा है और सबसे अच्छी बात इसमें है कि लगभग 95.6% बच्चों को जितने भी टीकाकरण जो लगते हैं, वो सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो मुझे लगती है उपलब्धि है। हमारे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र लगभग 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर पूरे देश में फैले हुए हैं, जहां हम ये सुविधाएं देते हैं टीकाकरण का और जो हमारी ANM बहने बच्चों का टीकाकरण करती है। तो ये एक बहुत अच्छा हमें इसमें उत्साहवर्धक हमें सर्वेक्षण में ये रिपोर्ट आया है। दूसरा एक और है ANC, जो गर्भवती माताओं का प्रसव पूर्व जांच जो किया जाता है, वो करीब 92% से बढ़कर 95.9 वो हो गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस है हमारा। और बच्चों का जो टीकाकरण करते हैं, तो जो पूर्ण टीकाकरण, वो 83.8% से बढ़कर 87.1% हो गया है। तो यहाँ भी बढ़ोतरी हुई है। पोस्टनेटल केयर, जो प्रसव के पश्चात जो माताओं को सुविधा देनी है, उसमें बढ़ोतरी हुई है 79.1% से 85.3% वो बढ़ा है। तो इस तरह काफी सारे उत्साहवर्धक हमारे जो इंडिकेटर्स आए हैं, सभी, चाहे वो मातृत्व की बात करें या शिशु की बात करें, सभी में ये बढ़ोतरी हुई है। और एक और मैं आंकड़ा भी बताना चाहूंगी, जो हमारे गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों में जो एक ये समस्या रहती है, उसमें काफी कमी आई है। तो जो स्टंटिंग और वेस्टिंग, हम सीवियर वेस्टिंग की बात करते हैं, इसमें काफी कमी आई है और हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज काफी बढ़ा है। 41% से बढ़कर वो 60.2% हुआ है। तो इसमें जो हमारा आयुष्मान भारत PMJ है, PM जन आरोग्य योजना, उसकी एक अहम भूमिका नजर आ रही है।
2: सो जैसा आपने मेंशन किया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऐसी और भी इसके जैसी जो प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं हैं, उन्होंने आपको लगता है कि विशेष रूप से कमजोर आबादी के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है?
3: हाँ, जो पहला मैंने कहा कि सबसे पहले जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के रूप में 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों के समीप ले जाएं, और उसमें कई सारे पैकेजेस इसमें जोड़े गए थे। पहले हम लोग मुख्य रूप से मातृत्व और शिशु पर ही स्वास्थ्य पर ही ध्यान देते थे, अब वृद्ध लोगों पर, फिर जो बढ़ते हुए एनसीडीज हैं उस पर भी ध्यान दे रहे हैं, ओरल हेल्थ, डेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, जेरियाट्रिक केयर, पैलेटिव केयर, ऐसे और 6 पैकेजेस जोड़े गए। तो अभी कुल मिला के 12 पैकेजेस ये सभी 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में दिए जाते हैं,
0: और सभी आयु वर्ग के लिए।
3: मुझे खुशी है बताने में कि ये जो टोटल फुटफॉल की बात अगर हम करें 2018 से लेकर अब तक, लगभग 522.41 करोड़ लोगों ने इसका लाभ लिया है। और जब हम सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ केयर की बात करें तो वहाँ पर जो हमारा आयुष्मान भारत PMJ आ गया
0: जी,
3: उसके माध्यम से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं, जो 5 लाख पर कोई भी बीमारी है और उसका इलाज वो कराना चाह रहे हैं तो उसमें आयुष्मान कार्ड जो दिए जाते हैं, लगभग 44 करोड़ कार्ड दिए गए हैं और लगभग 12 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस ऑथराइज हुए हैं, और जो ट्रीटमेंट हुआ है अभी तक वो लगभग 1.85 लाख करोड़ का हमारे लगभग 36,000 पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के माध्यम से दिया गया है
0: जी।
3: और अगर हम जो वल्नरेबल पॉपुलेशन की आप बात करें तो उसमें जैसे हमारे कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, जैसे पीएम जनमन, जो हमारे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, PVTGs, उन तक पहुंचने के लिए हम लोग मोबाइल मेडिकल यूनिट्स चलाते हैं जिसके माध्यम से हम उनके लिए कैंप्स करके उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, विशेष रूप से ट्राइबल पॉपुलेशन को ध्यान देते हुए, जहां भी अगर हमारे स्वास्थ्य केंद्र 5 किलोमीटर के अंदर में नहीं है क्योंकि वहां आबादी बहुत कम है, तो वैसे जगह भी हम मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से यही जो 12 पैकेजेस की मैं बात कर रही थी वो हम उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा हम हर महीने आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित करते हैं। ये शिविर हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों में होता है, चाहे वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो, चाहे हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जिला अस्पताल हो, और वहाँ पर स्पेशलिस्ट जाते हैं, जो CHC जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस से स्पेशलिस्ट जाते हैं और वो विशेषज्ञ सेवाएं देते हैं। और उसी तरह जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब सेंटर्स हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र, जहाँ पर सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO है, वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स जाते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं सेवाएं देने के लिए। इसके अलावा हमारा टेली कंसल्टेशन भी होता है जिसके माध्यम से डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर कोई मरीज ऐसे आए हैं जिनको वो स्पेशलिस्ट सेवा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दवा और डायग्नोस्टिक, जो मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स होते हैं, उसमें फ्री ड्रग इनिशिएटिव हमारा प्रोग्राम है और फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव प्रोग्राम है, सरकारी अस्पतालों में वो मुफ्त दिया जाता है।
0: तो ये जो इतना व्यापक आपने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया जो हमारे देश में उपलब्ध है, और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से जनधन, आधार, मोबाइल के बल पर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो भी बहुत बढ़ गया है, लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई है आम आदमियों के पास, आपको लगता है कि प्रौद्योगिकी का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है? ये जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध भी है और उसके लिए जो पहुंच है वो भी आसान है एक आम नागरिक के लिए, इन दोनों चीजों में टेक्नोलॉजी का ओवरऑल क्या रोल है? ये जो हम पब्लिक हेल्थ इकोसिस्टम में इतना भारी एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं,
3: ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इसमें रोल है। अभी जैसे मैं बता रही थी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम जो सेवाएं देते हैं 12 पैकेजेस, अगर वहां पर अगर किसी को कोई स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन की आवश्यकता है तो ई संजीवनी हमारा टेली कंसल्टेशन मॉड्यूल है, इसके माध्यम से आप स्पेशलिस्ट से सेवाएं ले सकते हैं। फिर अगर आपको मानसिक कोई बीमारी है या मानसिक आपको कोई परेशानी है तो हमारा एक टेली मानस कार्यक्रम है जिसमें काउंसलर्स

0: डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर भी मैं बताना चाहूंगी, 14416,
1: जी
0: ये टोल फ्री नंबर है, कोई भी डायल कर सकता है। और हमारे करीब ऐसे 53 सेंटर्स हैं जहां पर स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, तो कोई भी अगर कनेक्ट करता है और उसको कोई भी मानसिक बीमारी है, अगर दवा की आवश्यकता है या कोई सुझाव की आवश्यकता है, परामर्श की आवश्यकता है, तो वो उनसे बात कर सकते हैं, काउंसलर्स बात करेंगे और फिर वो उन्हें साइकेट्रिस्ट से जोड़ेंगे। उसके साथ साथ जो बता रही थी, हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के जो मिशन है हमारा, उसके NHM के माध्यम से जो हम विभिन्न कार्यक्रम चलाते हैं, चाहे MMR कम करने की बात हो या under 5 मोर्टेलिटी घटाने की बात हो या डिजीज एलिमिनेशन की, हर एक में हमारा पोर्टल है जिसमें हम ट्रैक करते हैं, एक एक मरीज को ट्रैक करते हैं। तो जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे हमारा UWIN पोर्टल है, तो बच्चों का टीकाकरण इसमें पूरा ट्रैक होता है। तो हर बच्चे का जिस दिन ड्यू उसका डेट है, उससे पहले माँ को वो मैसेज जाता है कि आप अपने बच्चे को निकटतम स्वास्थ्य उपकेंद्र में ले आइए टीकाकरण करने के लिए। अगर वो मिस कर गई तो उसको फिर जाता है कि भाई आप अपने बच्चे को लेकर नहीं आए, अगला ये डेट है उस पे जरूर आए। तो ये रिमाइंडर भी जाता है, वो घर बैठे बैठे अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकती है बच्चे का। तो इस तरह कई सारे हमारे पोर्टल है। NCD के लिए एक अलग पोर्टल है जिसके माध्यम से हम जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, ओरल ब्रेस्ट सर्वाइकल कैंसर, ये सभी की स्क्रीनिंग हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर में करते हैं। उनका फिर ट्रैकिंग होता है कि उनको रेफर किए गए, फिर ट्रीटमेंट चालू हुआ, अंडर कंट्रोल है कि नहीं। TB का निक्षय पोर्टल है, तो इस तरह हर एक प्रोग्राम के लिए, लेप्रेसी के लिए निकुष्ट पोर्टल है, तो हर एक प्रोग्राम के लिए हमारा एक पोर्टल है जिसके माध्यम से हम ट्रैक करते हैं। और सबसे अच्छी बात और खुशी की बात मैं बताना चाहूंगी कि अभी हाल ही में हम लोगों ने इन सभी पोर्टल्स का भी इंटीग्रेशन करके एक स्वस्थ भारत पोर्टल लॉन्च किया है, और उसी के साथ साथ उसका स्वस्थ भारत ऐप भी लॉन्च किया है। इसके माध्यम से हम सभी के बीच में जो हम समन्वय स्थापित करना चाह रहे हैं कि मरीज तो एक है, उसको 3 प्रकार की बीमारियां हो सकती है, लेकिन पहले हम अलग अलग पोर्टल से ट्रैक नहीं कर पाते थे। अब इस स्वस्थ भारत पोर्टल से, अगर उदाहरण स्वरूप अगर कोई गर्भवती माता है, वो अपना चेकअप के लिए गई, लेकिन पहले वो 2 महीने पहले गई थी और डायबिटिक पाई गई थी, तो ये हमें बता देगा कि अब वो आई है गर्भवती माँ अपने चेकअप के लिए, लेकिन वो महिला पहले से डायबिटिक है। तो ये जानकारी प्राप्त करके फिर डॉक्टर उनको फिर विशेष परामर्श दे सकते हैं। तो ये डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से हम जो कहते हैं ना, लास्ट माइल तक पहुंचना, आखिरी घर तक पहुंचना और आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, वो हम कर पा रहे हैं। और
1: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे देश में प्रमुख उभरती स्वास्थ्य चुनौतियां क्या है।
0: इस सर्वे में काफी अच्छी प्रगति हुई, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चुनौती आज के दिन में हमारे लिए और इस सर्वे में भी ये आया है, वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, ये व्यक्ति के खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का एक बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो अगर व्यक्ति स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हो और वो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं करे, जैसे हम कहते हैं एक्सरसाइज नियमित रूप से करिए, अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए, इस सर्वे में भी आया है कि NCDs बढ़े हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन की बात करें, हाइपरटेंशन वैसे थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन डायबिटीज काफी बढ़ा है, एडल्ट ओबेसिटी बढ़ा है, तो ये एक दिखा रहा है कि अब हमें इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा जो NP-NCD प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत हम लोग सभी 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हाइपरटेंशन, डायबिटीज और 3 प्रकार के जो कैंसर है, जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स है, ओरल ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर, इसका हम नियमित रूप से स्क्रीनिंग करते हैं। और 2018 से ये स्क्रीनिंग प्रारंभ हुआ, तब से लेकर अब तक हम लोग लगभग 42 करोड़ हाइपरटेंशन का स्क्रीनिंग कर चुके हैं और डायबिटीज का 42 करोड़ लोगों का कर चुके हैं, लगभग 35 करोड़ से ऊपर लोगों का ओरल कैंसर का स्क्रीनिंग कर चुके हैं, लगभग 16 करोड़ से ऊपर ब्रेस्ट कैंसर की महिलाओं का स्क्रीनिंग हो गया है और सर्वाइकल कैंसर का भी 9 करोड़ से ऊपर का स्क्रीनिंग कर लिए हैं। हमारे लिए यही चुनौती है कि स्क्रीनिंग तो हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, वो भी सरकारी अस्पतालों में फ्री है, प्लस PMJ के तहत अगर आप एम्पैनल हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ भी ट्रीटमेंट आपका फ्री है। जो खुद को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है, एक्सरसाइज नियमित रूप से करना है, खाने पीने पर ध्यान देना है, कम तेल का उपयोग करना है, कम नमक का उपयोग करना है, कम चीनी का उपयोग करना है, ये इसको आम लोगों को इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है। एक और भी हम लोग करते हैं। ईट राइट कैंपेन हमारा FSSAI के द्वारा चलाया जा रहा है, इसके माध्यम से हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस में काफी अवेयरनेस कर रहे हैं। फिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम लोग महीने में 10 दिन वेलनेस सेशंस करते हैं, जिसमें योगा, जुम्बा ये सब भी किया जाता है, उसमें भी लोगों को जागरूक किया जाता है। हर व्यक्ति को खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। आज के दिन में चुनौती, हर कोई अगर खुद को स्वस्थ रखने के लिए खुद मेहनत करे तो सरकारी तंत्र पर बोझ

0: काफी कम होगा। सरकार लगातार प्रयासरत है इसमें कार्य करने में और प्रिवेंशन पर ध्यान देने में। आशा बहने उनको ट्रेनिंग दिया गया है और सभी जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी है सभी को ट्रेनिंग दिया गया है जागरूक करने के लिए, लेकिन लोगों को भी खुद आगे आना होगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना होगा।
1: आराधना जी, आपने इतनी समग्र चर्चा की और जो हमारा देश का हेल्थ इको सिस्टम है उसमें क्या प्रगति हो रही है उसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, आगे की संभावनाओं पर प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 प्रमुख निष्कर्ष, चुनौतियां और संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का सबसे पहला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म बुढ़ा मिल गया से। किशोर कुमार के स्वर, मजरू के बोल और राहुल देव बर्मन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म एक फूल दो माली से। आशा भोसले की आवाज़, प्रेम धवन की शब्द रचना और रवि का संगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। ये गीत अभी आपने सुना फिल्म मिस्टर एंड मिसेज 55 से। मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ें थी। मजरू के बोल और ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं हसरत जयपुरी का लिखा यह गीत, सुनिए फिल्म संगम से। मुकेश की आवाज़ और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: नूर देवासी का लिखा है गीत, अभी आपने सुना फिल्म किस्मत से, आशा भोसले के स्वर और ओपी नैयर का संगीत। श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
2: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं, ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है, एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है, दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया, बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
2: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
4: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
5: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें हैं जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें हैं जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम वॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में DK शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने

0: नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मारतंड। 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम। और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मारतंड ने बोया, वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब? इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई, उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में, उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूं, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आजादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मारतंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधा वर्षन, या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको प्यामे आजादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में, फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहाँ तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की। पूरी आजादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला, तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे। और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30 से 35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा ये मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहते हैं। मूल्य है सत्य को सामने लाना। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद रखना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, 1974-75 का जो आंदोलन है। तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई, एक खोजी पत्रकारिता, जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया, जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई, वो है विकास पत्रकारिता। विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना, और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र, ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं ना कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आपको कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
0: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती। और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा, समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
2: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाजें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविजन कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका है लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे वहाँ निशा निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहाँ का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। वहाँ अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहाँ का वातावरण एकदम बदल जाता।

0: सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थीं, बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि सुनना भी सिखाया, और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला, मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। यह मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहां विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
1: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है, और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है, और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रैवल ब्लॉगर्स। जब घर की चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाएं, तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनकी रील्स और उनके रास्तों की बात, जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
2: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक AI और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं। यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपके सोलो ट्रैवलिंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
3: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं। हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो खत्म है वहाँ पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है। आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है। आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का। हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे

0: पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है, तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में, किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा।
1: और अब आपसे ये जानना चाहेंगे, जिसलिए आसानी से श्वेता ने ये कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस तो ये है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या वाकई ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
2: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला है, इससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
1: अच्छा।
2: क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कॉन्टेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे। शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं मीडिया एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की। स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रैवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रैवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रुपए थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रैवल किया। एक हफ्ता जब हमने ट्रैवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कंटेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो। तो ये हमारी स्टोरी चली। तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10 हजार से हमने शुरू किया था उस टाइम।
1: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहां पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी, आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स थे, वो 10,000 भी कैसे आए। और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं, आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत उसको करना चाहते हैं, कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है, ये जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो?
2: हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते। देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती है आसपास। अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से, लेकिन हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो ये एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे, इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे। हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये।
1: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं।
0: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट भी बैकआउट नहीं करना मुझे, ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौनती रहती थी कि तू सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सबको इंडिपेंडेंट तो हो गए अब। तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग। पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता। तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम, जो फिर मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई। फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है।
1: कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा? कैन यू गिव सम एग्जांपल?
0: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइवर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स हैं।
3: तो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो हर एक कंटेंट का एक यूएसपी होता है। जब हम आपका कंटेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
0: लोफर गामिनी।
3: हाँ। और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है?
0: इंस्पिरेशन एक तो देखो, हिंदी ना बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है। हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखें। हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ कुछ वर्ड, जैसे इंग्लिश वर्ड जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है, तो उसमें जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती। तो हम ना कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी, और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है। बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें।
2: मैं मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था। हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है। जब हम वहाँ पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो मेजर, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा

0: था रिस्पेक्टफुल करना पड़ा, तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा, और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं।
1: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी जिसमें आपने 500 का चैलेंज किया था, आपने पूरा इंडिया घूमा था, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक तो हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस और कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो।
2: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला, और बताए ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना सही में बहुत डाइवर्स है,
3: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में
2: पढ़ते हैं
3: उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
2: बहुत ही मजेदार होता है। हाँ,
3: तो एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती है लाइक ट्राइपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
0: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है वो ना ओवरथिंक करते हैं चीजों को। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था हमारे पास एक फोन था उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी, और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ। उसके आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी। मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, आप जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक। आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है, तो जो हमारे पास है सबसे पहले में उस पे ही स्टार्ट करना चाहिए, वो ही इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने GoPro भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमरा खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है। अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूँ तो मेरे लिए आसान नहीं है। तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए,
3: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज मतलब जैसे ट्राइपॉड
0: या ये जितना छोटा हो सके मतलब
2: कॉम्पैक्ट रखो।
0: जो गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये है कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है।
3: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है फॉलोअर्स और सक्सेस?
2: सक्सेस मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ इरेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स। हमें ऐसा लगता है जो हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है, हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है, ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो उस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं। आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना उसमें जो आइसक्रीम खाई थी और बहुत मजा आया था, और जो बच्चे तो वो है सक्सेस हमारे लिए। फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K है इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे है, तो वो हमारे लिए नंबर है। बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं।
0: आपके पास जो है जैसा है वहां से स्टार्ट करो, पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो।
4: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है। वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए। लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो। और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, ना उम्र की, ना दूरी की, ना परिस्थिति की। आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
5: जी धन्यवाद।
4: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी अब समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
5: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रखे

0: सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है। मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए स्वरोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है।
1: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
0: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मीन्स बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है, खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक उच्च कोटे की अध्ययन सामग्री मिलती है जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है तो वो उसको भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं उस पे ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कंपोनेंट है।
1: जी
0: तो अगर आप सामान्य बीए बीकॉम बीएससी भी कर रहे हैं तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कंपोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती। ऐसे ही जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो यहाँ पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
1: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी कारण से, वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है तो किस तरह से रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं अगर इग्नू की बात करें?
0: देखिए, ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है, कोई माइग्रेशन, कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इन्हांस करना है, आप तो विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है, 10+2 आपने किया हो, ज्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है, सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट, यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ाना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरेंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मोकाशी का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार, इन टुडेज ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ

0: क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मुकाशी।
1: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मुकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
0: अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मुकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। हर वॉइस हैज बीन ब्यूटिफुली नर्चर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंडरी गुरुज इंक्लूडिंग पंडित अजय पोहनकर।
1: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा चुकी हैं। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन के नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
0: शी हैज ग्रेस्ड प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल्स लाइक द तानसेन समारोह एंड उस्ताद आमिर खान समारोह, लीविंग एन इंडेलिबल मार्क विद हर सिंगिंग फ्रॉम द प्रयाग महाकुंभ टू द नेहरू सेंटर इन लंदन।
1: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
0: ऑनर्ड विद सेवरल एकोलेट्स इंक्लूडिंग द कलाश्री एंड मोहम्मद रफी अवार्ड्स, हर परफॉर्मेंसेस आर नॉट ओनली टेक्निकली फ्लॉलेस बट ऑल्सो डीपली रिफ्लेक्ट द सोल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक।
1: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही है राग मारू बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है मान तज देहो प्यारे। मध्यलय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है मानो न जियरा मोरा। और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना की बोल है मानो ना ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
0: टू बिगिन हर रेसाइटल टुडे She presents Raag Maru Bihag. The first is Vilambit composition set to Ektal with the lyrics Maan Taj Deho Pyare. This is followed by a Madhyalay composition set to Teental with the lyrics Mano Na Jiera Mora. She concludes this Raag with a Drut composition set to Ektal with the lyrics Mano Nahi Tumri Baat. Accompanying her on the tabla is Gandhar Rajhans and on the harmonium is Pramod Borgaonkar.

0: यह था विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही है राग रागेश्री, त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना की बोल है साजन बिन सुनी एरी आली, और द्रुत एकताल में निबद्ध बंदिश की बोल है राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री, दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारू बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्य लय कंपोजिशन सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेट टू एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल।

0: हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिसनिंग टू राग रागीश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुकाशी। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज गांधार राजहंस एंड ऑन हारमोनियम वॉज प्रमोद बोरगांवकर।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टुडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहाँ विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषा

में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:55 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।